0: नाइट आवर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चकचाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।
1: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
2: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
1: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
2: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
3: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी। वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: वेट, इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं।
9: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
6: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
10: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
6: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
10: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
9: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
5: एक और लड्डू ले लो।
11: थोड़ी और बिरयानी?
5: अरे अमरीका जाके थोड़ी मिलेगा।
12: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
10: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, वी आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
5: वी नीड टू टॉक।
13: अब क्या हुआ?
5: Nothing, it's not you.
13: Oh no.
5: It's the distance.
13: Distance? We live 10 minutes apart.
5: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
6: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
14: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

डालिस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के। यस, दिस इज वन एंड ओनली इपी द हिपी एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM। बिल्कुल आकाशवाणी जैसी आवाज नहीं आ रही मेरी। नमस्कार दर्शकों, आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो। आज थोड़ा मेरा कॉमेडी करने का मूड हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे खेल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन गाइस, आई होप यू आर हैविंग ए वंडरफुल ट्यूसडे। मुझे तो बड़ा मजा आया आज ड्राइव करके, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉश, दिस इज सो गुड। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट दिस शो ऑन द रोड। दिस इज योर बेस्टी एपी द हिपी एंड वी आर गोना बी हियर अंटिल 10 o'clock टॉकिंग अबाउट प्यार, मोहब्बत, इश्क, रिलेशनशिप्स एंड लॉट्स ऑफ ड्रामा एंड सच। नॉट सो मच ड्रामा, मोर साइंस बेस्ड स्टफ टुडे। लेकिन उसके पहले हम बहुत मज़ेदार चीज़ें करने वाले हैं, जैसे कि हमारा गिव अवे गेम एंड लॉट्स ऑफ अमेजिंग फन ट्यून्स। सो स्टिक अराउंड।

ये गाना तो बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना तो नहीं मतलब अर्ली 2000s का गाना है, यू नो. हाउएवर डू यू नो व्हाट मूवी दिस इज फ्रॉम? दिस इज दिस मूवी कॉल्ड चॉकलेट. इट्स लाइक सम काइंड ऑफ अ स्पाई मूवी विद इमरान हाशमी एंड तनुश्री दत्ता. आपको तनुश्री दत्ता याद है? शी वॉज मिस इंडिया इन 2004 एंड देन शी वेंट ऑन टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द मिस यूनिवर्स पैजेंट. हाउएवर शी डिड नॉट वन. पता है फन फैक्ट क्या है? शी स्टेप्ड अवे फ्रॉम बॉलीवुड अ फ्यू ईयर्स अगो. कुछ साल पहले उनके बड़े सारे वीडियोज आ रहे थे वेयर शी वॉज काइंड ऑफ यू नो इट्स लाइक इट वॉज लाइक अ लिटल सिंपथी रैंट कि अरे आई एम सो ब्रोक दीज पीपल आर जस्ट आई डोंट नो इट वॉज सम वन ऑफ दोज थिंग्स. बट नाउ हर रिसेंट सोशल मीडिया पोस्ट एंड एवरी थिंग जो है उसमें दिखाया जा रहा है दैट शी इज नाउ अपेरेंटली अ रियल्टर इन दुबई एंड शी इज प्रीटी सक्सेसफुल. सो हे गाइज, If you are stuck in a career, this is, I'm not doing this advertising by the way, this is just life advice in case you want. If you ever feel stuck in some kind of a career and अगर आपको लग रहा है कि भाई आप सब कुछ कर रहे हो और फिर भी उस करियर में कोई भी आपको गेन्स नहीं मिल रहे हैं, उसी में पड़े हो, then sometimes the universe is probably doing that because it wants you to step up and change the direction in which you're going. I don't know who needs to hear this, but if you feel that, it has happened to me lots of times. I was forcing myself to stick into this one job which was completely draining like everything out of me, and then I was like yaar main itna kar rahi hu but kuch ho hi nahi raha, and it was just like a bunch of weird things that were happening, and no matter how hard I tried, it was just not working out. So if you, and then you know what I did after that, I switched jobs. I mean, I immediately उसी टाइम पे मुझे बाई चांस एक और ऑफर आ गया एंड देन दे वर ऑल्सो विलिंग टू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर मी एंड देन आई वाज लाइक यू नो व्हाट, ओके यूनिवर्स आई हियर यू, यू गिविंग मी दिस अदर डायरेक्शन व्हिच मे बी आई डिड नॉट इवन थिंक अबाउट इन द फर्स्ट प्लेस बट इफ यू आर ऑफरिंग इट आई शैल टेक इट. सो समटाइम्स यू नो मे बी बॉलीवुड इज नॉट द वे टू गो, मे बी रियल एस्टेट इज द वे टू गो, एंड इफ यू आर इन एनी अदर करियर लाइक दैट मे बी दैट्स अ लेसन दैट यू कैन टेक फ्रॉम हर एज वेल. So let's listen to one more song and come back after this song.

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, सुइट 205, फ्रिस्को।
2: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
3: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 4697343338, 4697343338। माई फैमिली होम लोन .com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ।
5: Front page का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है।
4: कैसे?
5: Page 3 eatery?
4: No, not another restaurant again.
5: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
4: मतलब great food, great drinks, and great company, यानी कि मैं।
6: Page 3 Eatery, eat, sip, gossip, repeat.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: बेटा, 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
9: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
9: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
14: जिंदगी एक रंगमंच है,
15: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
16: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.

morning, guys. We are back. You are still listening to Funasia Radio 104.9 FM, and this is your bestie, Ippy the Hippie. Yes, Ippy the Hippie is in the house, and aap mera show sun rahe hain. An evening in Dallas. तो गाइज जैसे मैंने बताया था 8 o'clock को हमारा गिव अवे वाला टाइम होगा. गिव अवे इस हफ्ते का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है. आई एम गोना टेल यू अ स्टोरी एंड देन यू हैव टू फिगर आउट व्हाट बॉलीवुड मूवी इट इज. सो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट फन. बाय द वे आपको पता है ना कि सोनू निगम इज कमिंग ऑन सेप्टेम्बर 26th 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. तो अगर आपने अभी तक टिकट्स नहीं लिए हैं भैया, 2 हफ्ते ही बचे हैं, जल्दी जल्दी ले. 2 हफ्ते क्या, 10 दिन, 9 दिन बचे हैं एक्चुअली टू बी प्रिसाइज. तो फटाफट अपनी टिकट्स उठा लो. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल 855-360-SHOWS. एंड सोनू निगम वाज, आई हैव बीन सीइंग सम क्लिप्स बिकॉज ही इज ऑन टूर राइट नाउ. आई हैव बीन सीइंग सम क्लिप्स ऑफ ऑल द अदर सिटीज दैट ही इज परफॉर्म्ड एट, एंड इट्स सो अमेजिंग. कल ना मैंने एक वीडियो देखी जिसमें

0: 360 shows. And Sonu Nigam was, I've been seeing some clips because he's on tour right now. I've been seeing some clips of all the other cities that he's performed at. And it's so amazing. Kal na maine ek video dekhi jisme he sings in the male voice and the female voice both. And what song was that? Bada amazing sa video tha. And I was like, oh my God, only Sonu can do this. But he sings in his low male voice. And then he sings in his high girl voice. कौन सा गाना था यार, आई थिंक श्रेया घोषाल का पार्ट भी गा रहे थे वो, पर मुझे याद नहीं आ रहा गाना, अभी याद नहीं आ रहा, बट इट वॉज जस्ट, इट जस्ट शोड अप ऑन माई फीड ऑन इंस्टाग्राम एंड आई वॉज लाइक मैन दिस कॉन्सर्ट इज गोना बी अमेजिंग, सो डोंट मिस इट, इट्स गोइंग टू बी सो गुड. सैटरडे सेप्टेम्बर 26 एट 8:30 PM मैं एक गाना बजा रही हूँ आपके लिए, उसके बाद मैं सोनू जी का भी एक गाना बजाऊंगी, क्यों नहीं, क्योंकि बजाना भी चाहिए है ना, तो इसीलिए आप ये वाला इंजॉय करो तब तक.
1: जो चौका उड़ते हुए जाए उसे छक्का कहते हैं.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
6: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
5: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Huzoor, aapko chunna hoga. Hum ya ye biryani?
11: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
10: Aakhir kya hai is biryani mein?
11: Dam mein narmi, masalon mein jadoo aur har niwale mein nawabi swaad.
12: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
0: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
12: Barista House, richness of biryani bliss.
13: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jago bhi. Exclusive media partner, Panacea.
14: Sathiya.
0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
15: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
16: तुमसे मिलके दिल का है।
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
17: To the right, all my ladies and my mans and all my ladies. All my ladies and my mans and all my ladies. You can do it like.
18: जब मॉम डैड की कोई लव स्टोरी ही नहीं थी तो गाने का थीम क्या था? ऐसे अनरोमांटिक कपल के लिए क्या गाना बनाया गया? और कैसे लगते होंगे ये सब?

0: गाइस, वी आर बैक. हाँ जी, तो भाई 8:08 हो चुके हैं एंड एज प्रोमिस्ड अभी हमारा गिव अवे राउंड है. तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गो प्ले द गिव अवे. आज गिव अवे इज वेरी सिंपल. आई एम टेल यू अ बॉलीवुड स्टोरी एंड देन यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द मूवी एंड आई कैन ऑफ विल टेल यू द स्टोरी माई वे. ठीक है, तो आपको उसमें से फिगर आउट करना पड़ेगा. तो गिव अवे है क्या? द गिव अवे इज फ्रॉम मिराज लाउंज. अगर आपको हुक्कास चाहिए, अमेजिंग फूड, कॉकटेल्स, लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट्स और भी कुछ अगर चाहिए, देन मंडे टू थर्सडे 11 AM टू 6 PM उनका हैप्पी आवर भी है. दिस इज फ्रॉम द मिराज लाउंज. दे ऑल्सो हैव लेडीज नाइट एंड कॉलेज नाइट. अगर आप आज का क्वेश्चन आंसर करते हैं करेक्टली, देन यू गेट $20 ऑफ ऑन अ मिनिमम बिल ऑफ $50. दैट्स राइट गाइज, इफ यू डू दिस वन देन यू गेट $20 ऑफ ऑन अ मिनिमम बिल ऑफ $50. तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गो प्ले दिस गेम. तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वर, लाइक आई सेड, ऑल्सो बाय द वे एक चीज मैं बताना भूल गई, वी हैव टू विनर्स फॉर टुडे. मैं दो क्वेश्चन पूछूंगी. अगर आप पहले कॉलर है, प्लीज ओनली पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, दोनों का मत दीजिएगा, क्योंकि दो विनर चूज करने हैं मुझे. तो ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर दीजिए. ओके, सो हियर वी गो. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज दिस गाय. ठीक है, ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ गाय एंड देयर इज ऑलवेज अ गर्ल. बॉलीवुड मूवी में यही होता है. तो जो बंदा था उसको ना बड़ा प्यार था विद दिस गर्ल. उसने उसको डांस करते हुए देखा, कहता है OMG, आई एम टोटली इन लव. और फिर उसके बाद वो लड़की के पीछे ऐसे घूम रहा था. फिर बाद में पता चला कि लड़की तो भाई किसी और से प्यार करती है. फिर उसका दिल टूट टूट गया. फिर उसने कहा मैं ये सब छोड़ छाड़ के आई एम मूविंग टू लंडन. लंडन में जाके बहुत साल बीत जाते हैं. ही बेसिकली डिसाइड्स टू गो नो कॉन्टैक्ट विद दिस गर्ल एंड ही वॉज एक्चुअली रियली क्लोज टू हर फैमिली ऑल्सो. लंडन में जाके ही इज डेटिंग, ही इज एक्टिवली डेटिंग, बट ही इज स्टिल काइंड ऑफ सिंगल, नॉट गॉटन इन टू एनी सीरियस रिलेशनशिप. बेसिकली ही कुड नॉट गेट ओवर दिस चिक. ओके, देन बड़े सालों बाद ही गेट्स टू हियर द न्यूज कि अरे दिस चिक हैज पास्ड आउट ऑफ इलनेस. अरे लो, पहला कॉलर भी आ गया हमारा. लेट्स सी. हाय, कैन यू हियर मी?
1: यस.
0: ओके, पहले तो अपना नाम बताइए और उसके बाद आंसर बताइए. ओनली टेल मी द नेम ऑफ द मूवी दो. ओके,
1: लम्हे. मेरा नाम जया.
0: जया, ओके, कांग्रेचुलेशंस. यस, इट इज लम्हे. वेरी गुड. तो मेरा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो दूसरे वाले कॉलर है, आपको मुझे ये बताना है कि उसकी बॉलीवुड एक्ट्रेस क्या है. जया, आपको नहीं बताना है. आप कांग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं. मैं दूसरे कॉलर की वेट कर रही हूँ. ठीक है, जैसे ही वो कॉलर आएगा देन या बट तब तक के लिए गाइज, स्नेहा आप लाइन पे, जया सॉरी स्नेहा कह रही हूँ, जया आप लाइन पे बने रहिए. होपफुली आई गेट अनदर कॉल. हियर वी गो. और अगर कॉल कट जाती है देन कॉल मी बैक इन 5 मिनट्स. ओके ओके जया.
2: ओके
0: ओके. हाय, कैन यू हियर मी?
2: I can hear you. Yes, ma'am.
0: Okay. पहले तो अपना नाम बताइए and then tell me the name of the Bollywood actress who was in the movie.
2: मेरा नाम प्रतीक है. और the Bollywood actress you're talking about is Sridevi.
0: Yes, very good. Congratulations. Yes, guys, I have my two winners for today. Thank you so much for all the calls. प्रतीक आप लाइन पे बने रहिए. I'm gonna play a song and then I'll take your information उसके बाद. ठीक है?
2: Sure.
0: Okay. Mm-hmm. Okay, here we go.

0: guys, we are back. This is Ippy the Hippie only on Fun Asia Radio 104.9 FM. And guys, आगे बढ़ते हुए, it is 8:27 on the clock. हम 3 मिनट में ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं ये जरा आपको बता दूं कि माई टाइम एक्विटी इज ए CPA फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई एंड दे हेल्प बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ के बारे में सोच रहे हैं या फिर ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, माई टाइम एक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज सोल्यूशंस डिजाइंड अराउंड योर गोल्स. विजिट mytimeequity.com और कॉल 4697021272 टूडे. अभी थोड़ी देर पहले ना मुझे कॉल आई, कहता है आपने वो जो गाना नहीं आया था सजना जी वारी वारी जा, मैंने थोड़ी देर पहले बजाया था. आई एक्चुअली क्वाइट लाइक दैट सॉन्ग बिकॉज आई थिंक इट इज ग्रूवी AF. हाउएवर कोई मुझे एक कॉल आई, उन्होंने बोला कि मारविन जी ने भी वो गाना बजाया और आपने भी वो बजाया, लेकिन आपने लिरिक्स नहीं पढ़ा, उसके लिरिक्स को आपने नहीं सुना बिकॉज उसमें यू नो इट्स टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल हु इज कम्प्लीटली डिवोटेड. मैंने कहा भैया पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में, मतलब पूरे बॉलीवुड के हिस्ट्री में ऐसे इतने सारे गाने थे, लेकिन आपको इतने सारे, मतलब लता जी ने कितने सारे ऐसे गाए कि मैं तुम्हारे चरणों में गिर जाऊं, ऐसे ऐसे करके. और कवाली में भी कई बार इतने सारे गाने होते हैं. आई मीन कवाली म्यूजिक इज ऑफकोर्स द मेटाफर इज डिफरेंट, वी आर सिंगिंग टू गॉड. बट अगर हम सिर्फ बॉलीवुड को ही ले लें, देर आर सो मैनी सॉन्ग्स फ्रॉम टाइम एंड अगेन, फ्रॉम लाइक आई डोंट नो 1930s ओल्ड बॉलीवुड टू मॉडर्न डे. लेकिन कई बार जब मुझे एक गाना पकड़ के आप उसको इतना क्रिटिकली एनालाइज करते हैं ना भाई, गाना गाना होता है, इट डजेंट मैटर. समटाइम्स समटाइम्स यू लुक बियॉन्ड जस्ट द लिरिक्स, समटाइम्स यू लुक एट द मेलोडी, समटाइम्स यू लुक एट द ग्रूव, एंड समटाइम्स यू जस्ट मतलब इन्जॉय इट फॉर द सेक ऑफ इन्जॉइंग इट. इट डजेंट मैटर वॉट इट इज, वॉट यू डू नीड टू एनालाइज इज समटाइम्स. अभी थोड़ी देर पहले ना आई ऑल्सो प्लेड द सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी called Lucky, जिसमें there is Salman Khan and there is this young Bollywood actress, and he, you know, we all know that Salman Khan has this thing ki once he breaks up with this someone, he finds another girl who looks exactly like his.
1: ये तारा वो तारा हर तारा.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
3: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
4: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
5: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
6: Ocho.
7: Hoko.
6: Ocho.
7: Hoko.
6: Ocho.
7: It's Hoko.
8: अरे बस भी करो यार.
7: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
8: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
2: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
9: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
10: हाँ.
9: घर रिलोकेट करनी है?
10: हाँ.
9: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
10: हाँ भाई हाँ.
9: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
11: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2000.
6: 3315।
10: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
12: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
10: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
12: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
13: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
14: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.
0: ये तो कुछ और ही चल गया भाई, मैं तो गाना लगा रही थी, ये तो डायलॉग चल गए। लेकिन गाना आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद जब गाना एक्चुअली शुरू हो जाएगा। हमने इनिशियल का डायलॉग नहीं बोलना चाहिए था। हाउएवर गाइस, जैसे मैंने बोला, आज का हमारा डिस्कशन, वी आर गोना कंटिन्यू ऑन द chemical reactions that makes the male bonding behavior happen. We were talking about oxytocin and vasopressin yesterday. तो उसी से related मुझे बड़ी एक interesting सी call आई आज। तो उन्होंने मुझे बोला, भाई मैंने आपका कल का शो सुना। मैंने कहा अच्छा, okay, very good। तो उन्होंने बोला कि जब शादी करते हैं ना, जब शादी के जो vows exchange करते हैं, वो जो paper में हम sign नहीं करते काजी के सामने या फिर you know जो भी आपका notary वाले के सामने जब sign नहीं करते कि अच्छा चलो अब शादी हो रही है, whatever, शादी के papers legal हो रहे हैं, तो वहां पे ना दोनों को हस्बैंड वाइफ को दोनों को ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का एक शॉट पिलाना चाहिए, चड़ाक चड़ाक, सो दैट यू कैन लॉक इन द मैरिज ऑल टुगेदर फॉर इटर्निटी। तो इंस्टेड ऑफ मारोइंग सात फेरे अराउंड आग, मे बी दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ द शादी का ट्रेडिशन ऑल्सो, वन शॉट ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वन शॉट ऑफ वैसोप्रेसिन। मे बी अ लॉट ऑफ द मॉडर्न मैरिजेस विल लास्ट देन। I think that's a brilliant idea. Somebody, if any of the biotech scientists are listening, you guys need to get on that game. I'm telling you, it's going to sell.

एंड गाइज वी आर बैक. तो आगे बढ़ते हुए गाइज, लाइक आई सेड, वी वर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. ओके, नाउ मूविंग ऑन. टुडे वी आर गोना स्टार्ट आउट विद सम रियली क्विक फैक्ट्स. आई एम कॉलिंग दिस द लव लैब. ओके, द अटैचमेंट एडिशन. उसका मतलब क्या है? फैक्ट वन, फिजिकल टच इवन एज ब्रीफ एज 20 seconds, मतलब अगर आप 20 seconds के लिए हग करते हो किसी को, दिस इज एक्चुअली प्रूवन बाय साइंस. इट रेजेस ऑक्सीटोसिन लेवल एंड लोअर्स कोर्टिसोल. अगर आपको नहीं पता कोर्टिसोल क्या है, कोर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन. तो आपने वो वाली मूवी देखी है, मुन्ना भाई MBBS? उसमें भी बोलता है भाई एक झप्पी एवरी डे के लिए इट हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस. वेल, देर इज, इट्स एक्चुअली अ साइंटिफिक थ्योरी. सो इफ यू फाइंड समबडी दैट यू कैन हग एवरी सिंगल डे फॉर जस्ट 20 seconds, देन यू विल स्लीप बेटर एट नाइट. ओके, मीनिंग अ सिंपल हग हैज रियल मेजरेबल बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑन स्ट्रेस रिडक्शन. फैक्ट नंबर टू, सिंक्रनी, मतलब एक साथ, मतलब डूइंग द सेम थिंग्स इज रियल एंड मेजरेबल. स्टडीज यूजिंग डिवाइसेस दैट ट्रैक हार्ट रेट हैव फाउंड दैट रोमांटिक पार्टनर्स जो होते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ या रोमांटिक पार्टनर्स, जैसे भी आप बोलना चाहें, देयर हार्ट रेट्स कैन सिंक अप. मतलब एक टाइप के हार्ट रेट्स हो सकती है ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन एंड फिजिकल क्लोजनेस. इज़न्ट दैट अमेजिंग? अ फिनोमिनन ऑल्सो ऑब्जर्व बिटवीन पेरेंट्स एंड इन्फेंट्स. तो अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके और आपके बच्चे की भी हार्ट रेट सेम हो सकती है. ठीक है, फैक्ट नंबर थ्री, लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स शो समथिंग इंटरेस्टिंग. दिस इज फॉर ऑल माई लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स. जो इंडिया US का जो रोमांस था, आई नो सो मैनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दैट लॉन्ग डिस्टेंस वाला पीरियड. सम सजेस्ट दैट कपल सेपरेटेड बाई डिस्टेंस कैन मेंटेन स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स बाय फ्रीक्वेंट वर्बल एंड वीडियो कॉन्वर्सेशन. वी ऑल नो दैट, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब अगर आप फ्रीक्वेंट फोन कॉन्वर्सेशन कर रहे हो या वीडियो कॉल कर रहे हो, तो आपका जो इमोशनल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, मोर स्ट्रांग दैन इन पर्सन रिलेशनशिप्स, स्पेशली इन टूडेज टाइम्स. ओके, बिकॉज वोकल एंड फेशियल क्यूज, मतलब आपकी जो आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है या फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं, दे कैन ट्रिगर ऑक्सीटोसिन रिलीज थ्रू फिजिकल टच. ऑल नो दे कैन ट्रिगर ऑक्सीटोसिन रिलीज, ऑल दो फिजिकल टच इज डेफिनेटली वे मोर पावरफुल एंड स्ट्रोंगर, लेकिन वॉइस एंड वीडियो कैन ऑल्सो यू नो रिलीज ऑक्सीटोसिन. ठीक है, एक और फैक्ट है, आई विल टेल यू अबाउट दैट फैक्ट आफ्टर दिस सॉन्ग.

एंड गाइज वी आर बैक. तो जाने से पहले जैसे मैं बता रही थी, वी वर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट. सो वन लास्ट फैक्ट बिफोर वी लीव, वन लास्ट फैक्ट अबाउट हॉर्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन. पेट्स के, जब पेट्स के बारे में बात करें, दैट इज इफ यू हैव अ डॉग और अ कैट इन योर हाउस, स्टडीज हैव ऑल्सो फाउंड दैट बोथ डॉग्स एंड देयर ओनर्स, बाय द वे इफ यू आर अ डॉग मॉम और अ कैट मॉम और व्हाटएवर, शो ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेज आफ्टर म्यूचुअल आई कॉन्टैक्ट एंड पेटिंग. आई मीन आई थिंक दिस इज, आई डोंट नीड टू से दिस, बट वी ऑल नो दैट लोगों की स्ट्रेस मतलब दूर हो जाती है अपने पेट्स को देख के, उनके पेट्स के साथ कडल करके एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, वेन यू डू लाइक अ लिटल फरी स्क्रैच टू योर डॉग और समथिंग लाइक दैट, आई थिंक वो सबको ही पता है, यू नो, इट जस्ट इंक्रीजेज, यू नो, योर बॉन्डिंग लेवल और इट रिड्यूसेज योर स्ट्रेस लेवल. वी ऑल नो दैट. मीनिंग द सेम बॉन्डिंग केमिस्ट्री ह्यूमन्स यूज विद ईच अदर इज ऑल्सो वैलिडेटेड विद एनिमल्स, ह्यूमन एंड एनिमल बॉन्ड. तो आज की हमारी बात थोड़ी और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले आगे बोलते हैं कि उसके बाद हम क्या बात करेंगे. वी आर गोना गो टू अ मच हार्डर प्लेस आफ्टर 9 o'clock, अभी 5 मिनट बाद. व्हाट हैपन्स इन द ब्रेन ड्यूरिंग ब्रेकअप या फिर अ हार्ट ब्रेक स्टेज. वी विल टॉक अबाउट व्हाई ब्रेकअप्स कैन समटाइम्स फील लाइक लाइफ ही खत्म हो गई, मतलब एकदम इट फील्स लाइक विड्रॉल. व्हाई ग्रीफ एंड लव एक्चुअली शेयर द ब्रेन सर्किटरी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ और व्हाट डज साइंस यू नो से दैट इट कैन हेल्प यू हील. ठीक है, तो लेकिन उसके पहले ये गाना एंड देन वी आर गोना गो इनटू अ ब्रेक. सी यू सून गाइज.

तो गाइस, जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने बोला था 9 बजे के बाद वी विल टॉक अबाउट न्यूरोसाइंस एंड हार्ट ब्रेक्स. यस, अभी तक हमने बात करी अट्रैक्शन, यू नो, फॉलिंग इन लव, व्हाट मेक्स रिलेशनशिप लास्ट. नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट व्हाट डज नॉट मेक देम लास्ट एट ऑल. ओके, सो वेलकम बैक टू दिस पार्ट ऑफ आवर शो व्हिच इज कॉल्ड द केमिस्ट्री ऑफ अस. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. व्हाई हार्ट ब्रेक एक्चुअली फील्स लाइक रियल इंजरी, लाइक रियल बॉडीली इंजरी. ऑल्दो आपको भी पता है कि बॉडीली इंजरी ऐसा सच कोई नहीं होती अनलेस यू आर एक्चुअली फिजिकली हर्टिंग योर सेल्फ. देन इन दैट केस यू नीड टू डेफिनेटली गो टू अ थेरेपिस्ट. हाउएवर, लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट कोटेड स्टडीज इन दिस होल फील्ड फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट नायोमी आइजनबर्गर. उन्होंने बोला कि सोशल रिजेक्शन जो है, मतलब आपका जब कोई रिजेक्ट करता है, इट एक्टिवेट्स द एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एंड द एंटीरियर इंसुला. इसका मतलब क्या है? दीज आर टू ब्रेन रीजन्स विच आर ऑल्सो एक्टिवेटेड बाय फिजिकल पेन. तो जब आपको चोट लगती है तो वो जो ब्रेन के जो रीजन्स होते हैं वो उस टाइम पे भी एक्टिवेट होता है जब आपको कोई सोशली रिजेक्शन मिलता है, जैसे ईदर फ्रॉम अ फ्रेंड सर्कल और ऑफ कोर्स अ लव्ड वन, एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन. ठीक है, इन देयर एक्सपेरिमेंट, ये जो साइंटिस्ट हम जो बोल रहे थे, पीपल हु वर सोशली एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ सिंपल बॉल टॉसिंग गेम, या फिर बचपन में क्रिकेट खेलते हुए आपको टीम में नहीं चूज किया गया या फिर सबसे लास्ट में चूज किया गया, यू रिमेंबर हाउ दैट फेल्ट, showed brain activity patterns overlapping meaningfully with people experiencing physical pain. तो वो जो humiliation होता है वो इतना ज़्यादा होता है, it's almost like physical pain. This is the actual neurological basis for when we say things like it hurts or it feels like a real ache in the chest after a breakup. And ये कोई metaphor नहीं है, there's actual overlap in the brain's pain processing machinery. आगे बढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में मैं बोलूंगी, लेकिन उसके पहले समुंदर पार आपके लिए यही गाना.

तो गाइज ये गाना सुनते सुनते ना मुझे उसकी याद आ गई कई बार. अभी जो हमें थोड़ी देर पहले कॉल नहीं आई थी, उन्होंने बोला था कि आप सजना जी वारी वारी कैसे बजा रहे हो, उसमें तो लड़कियां पैरों पे गिर जा रही हैं. भाई ये सात समंदर में भी हो रहा है. 90s में जब होता था तब आपको भी प्रॉब्लम नहीं थी, अब थोड़े मॉडर्न गानों में हो रहा है तब सबको प्रॉब्लम हो रही है. तब हम लिरिक्स को एनालाइज करें ढूंढ ढूंढ के कि कहाँ गड़बड़ हो गई. भाई गाने ऐसे हमेशा से लिखे जाते हैं, कई बार उतने डिटेल में नहीं एनालाइज करते. कई बार यू जस्ट लिसन टू द म्यूजिक एंड यू एंजॉय द ग्रूव, दैट्स ऑल इट टेक्स. आगे बढ़ते हुए गाइस, जैसे हम बोल रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट हार्ट ब्रेक एंड साइंस. तो बेसिकली पता है क्या है, हार्ट ब्रेक सिर्फ सैडनेस की बात नहीं है. मतलब ठीक है, दिल टूटता है जब दिल ही टूट गया, तो वो सिर्फ सैडनेस नहीं है उसमें. इट्स ऑलमोस्ट लाइक, जैसे याद है आपको डे आई थिंक 2 में बता रहे थे, विच वॉज लाइक ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम. ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है एंड फॉलिंग इन लव समटाइम्स ऑफन इज एसोसिएटेड विथ लाइक हैविंग सम काइंड ऑफ अ ड्रग एडिक्शन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज हर बारी आपको वो अटेंशन मिलता है, वो रिवॉर्ड सेंटर जाग जाता है दिमाग में. सो दैट इज़ वाई वेन यू हैव अ ब्रेकअप और लाइक मतलब यू नो सेपरेशन, इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू विड्रॉल फ्रॉम एन एडिक्टिव सब्सटेंस. एंड दिस इज कम्बाइंड विद दुख भरी ग्रीफ, कम्बाइंड विद अ जेन्युइन थ्रेट रिस्पॉन्स. ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग एट वंस. सो इमेजिन आपको रात को नींद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आपका कॉर्टिसोल इतना सारा स्पाइक हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. योर ब्रेन वॉन्ट्स द रिवॉर्ड विच इज योर एक्स बेसिकली, वाइल साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग द फैक्ट दैट रिवॉर्ड तो भाई चला गया. मतलब वो अपने आप को हम समझा भी रहे हैं कि भाई एक्स तो चला गया, रिवॉर्ड भी चला गया, लेकिन आपके ब्रेन को चाहिए भी वो डोपामिन चाहिए. याद है वी टॉक्ट अबाउट दैट डोपामिन? यस. ऑल विद अ थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम. आप हाई अलर्ट पर हो क्योंकि कुछ मेजर सोर्स ऑफ सेफ्टी या प्रिडिक्टेबिलिटी आपकी जिंदगी से निकाल दिया है. सो नाउ यू आर इन लाइक दिस अनसेफ जोन. सो ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग all at once. Therefore, heartbreak is not just an heartbreak, yeah. It's not just a breakup. It's a real thing. It's like it's real. So next time when your friends come around and like, it's okay, it's just a breakup, there's gonna be someone else, tell them, dude, there are sciences which have said it's not or never just a breakup.

everyone, guys. This is Tilipi the Hippie on 104.9 Fun Asia Radio, and this is my show, An Evening in Dallas. हम जाने से पहले बात कर रहे थे ब्रेकअप्स के बारे में एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड हॉर्मोन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. तो इसीलिए अगर आपका कोई ब्रेकअप वेकअप चल रहा है एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड हेड डाउन टू पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, स्पेशली क्योंकि उनके पास एक नया प्लान आया है विच इज़ ओनली $85 अ मंथ. यू गाइज, इट्स नॉट एन इंश्योरेंस. तो दिस इज़ बेसिकली फॉर पीपल हु कैनॉट अफोर्ड हेल्थ इंश्योरेंस एंड डोंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस. बट यू नो, हेल्थ केयर प्रॉब्लम सबको होती है. वी ऑल हैव टू गो टू द प्राइमरी केयर, फॉलो अप्स, प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीजेज, मेडिकेशन, सबको जरूरत होती है कभी ना कभी. ओके, सो योर मेंबरशिप कवर्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इवन टेली हेल्थ व्हेन अप्रोप्रिएट. एंड सबसे ज्यादा आपको 20% सेविंग्स मिलेंगी ऑन सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज. Call or text 214-666-6259 or visit passionhealthphysicians.com. Passion Health, they have really cared for our community for a long time. Just remember, this is not a health insurance. This is a plan. It's like a savings plan or something. So you should go there and check it out instead of just listening to what I have to say. So guys, moving forward, like I said, we were talking about breakups and everything. So one of the another piece in this entire breakup wala science is there is, jaise main bata rahi thi, cortisol bhi hota hai, aapka primary stress hormone jo hota hai, it spikes significantly after a breakup and it can stay elevated for a long time, which affects sleep, आपकी भूख, appetite, immune function. You can actually get sick from a breakup. बुखार बुखार हो सकता है. आई नो पीपल हैव हैड दिस. फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट इज वाई, दिस इज वाई पीपल ऑफन रिपोर्ट गेटिंग फिजिकली सिक, स्लीपिंग पुअरली, या फिर फीलिंग फॉगी इन द मॉर्निंग. सुबह उठ के आपको लगता है आपका दिमाग नहीं चल रहा है, कितनी भी आप कॉफी पी लो, यूर लाइक यू जस्ट नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली आफ्टर अ सीरियस ब्रेकअप. एंड इट टेक्स टाइम टू गेट आउट ऑफ इट बिकॉज इट्स ए जेन्युइन होल बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स, नॉट जस्ट अ वीकनेस और ओवर रिएक्शन. नाउ there is a striking, most unbelievable example of how this can actually be a condition. And iska naam pata kya hai, main thoda soch ke bolti hu, bada unusual word hai. It's called Takotsubo cardiomyopathy. Takotsubo, if I'm doing the pronunciation correctly, it's Takotsubo. I don't know how it's pronounced, but I'm hoping it's like that. But iska naam hai the broken heart syndrome. इसका मतलब क्या है, आई विल टेल यू आफ्टर द सॉन्ग, एक्चुअली आफ्टर 9:30, क्योंकि इसके बाद ब्रेक होने वाला है. तो ब्रेक के बाद आओ, फिर बताते हैं.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
2: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
1: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
2: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
3: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

तो गाइज हम बातें कर रहे थे ब्रेकअप्स के बारे में. तो वन ऑफ द थिंग्स विच वॉज इम्पॉर्टेंट इन द ब्रेकअप्स वॉज दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कोर्टिसोल रिस्पॉन्स, है ना. तो कोर्टिसोल रिस्पॉन्स से हम लोग वापस हमने वो सारी बातें करी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ठीक है. नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इसमें पता क्या है कि एक्चुअली यू नो वॉट, लेट्स डू अ सॉन्ग, देन वील कम बैक एंड डू दिस.

तो गाइज, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ थी, भाई मैं आई वॉज ऑन द कॉल विद वन ऑफ आर लिसनर्स, एंड जैसे मैंने अभी बोला, हाउ डू यू डील विद ब्रेकअप्स, जैसे मैंने बोला आई लाइक टू मूव ऑन, एंड बाय मूविंग ऑन आई मीन आई लाइक टू गेट बिजी विद वर्क, बिकॉज आई थिंक आई वुड कंसिडर माई सेल्फ अ वर्कहॉलिक, एंड जस्ट टू काइंड ऑफ अवॉइड इट, एंड आई एम लाइक ओके जस्ट लेट्स जस्ट गेट बिजी विद वर्क एंड यू नो इवेंचुअली भूल जाएंगे. लेकिन अभी मेरे पास इंटरेस्टिंग सी कॉल आई, एंड दिस पर्सन वन ऑफ आर रेगुलर लिसनर्स. फन फैक्ट ये है, उन्होंने बहुत बारी पहले कॉल किया है लेकिन कभी उनकी कॉल कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन पहली बार उनकी कॉल कनेक्ट हुई. ही सेड आई ट्राइड फॉर द लास्ट 2-3 मंथ्स एंड नॉट जस्ट योर शो बट अदर शोज ऑल्सो, एंड द फर्स्ट टाइम माई कॉल हैज एवर कनेक्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू.

कॉल किया है, लेकिन कभी उनकी कॉल कनेक्ट नहीं हुई. लेकिन पहली बार उनकी कॉल कनेक्ट हुई. ही सेड आई ट्राइड फॉर द लास्ट 2-3 मंथ्स एंड नॉट जस्ट योर शो बट अदर शोज ऑल्सो, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम माई कॉल हैज़ एवर कनेक्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द कॉल एंड थैंक यू फॉर ट्राइंग अगैन एंड अगैन. आई मीन आई वी रियली डू अप्रिशिएट ऑल आर ऑडियंसेज एट फनेशिया हेयर. तो उन्होंने मुझे ये शेयर किया कि समटाइम्स मोर देन मूविंग ऑन फॉर हिम व्हाट हेल्प्ड हिम डील विथ हिज रियली रियली डिफिकल्ट ब्रेकअप, दैट मोर देन मूविंग जस्ट मूविंग ऑन एंड फॉरगेटिंग अबाउट इट एंड इग्नोरिंग द पेन, व्हाट हेल्प्ड हिम डील विथ ऑल ऑफ द ब्रेकअप एंड ऑल द हार्ट ब्रेक लाइक सिचुएशन वॉज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द ब्रेकअप एंड क्लोजर. तो क्लोजर के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं. Closure can happen either by in a in-person conversation that you sit in front of your former partner and you talk it out ki unki kya problem thi, aapki kya problem thi, ye. Kai baar closure individually bhi ho sakta hai. Instead of sitting and talking, sometimes if you just analyze the relationship from an objective standpoint and just understand the fact that, okay, my partner was an orange and I am an apple, and sometimes apples and oranges don't work well in a salad together. Sometimes they can, but sometimes they don't. And just understanding that there are two different types of fruits with completely different health benefits. I know, I'm not hungry, don't worry, I've had my dinner. But what I'm trying to say is, you know, they are of two different varieties altogether. And sometimes just understanding that really helps to kind of move on. And he said, in his words, he said this is closure for him. And you know what happened for him was he talked to his partner and there was still love and there was still understanding and there was still emotional attachment. And then his partner said ki yaar ye thoda na toxic ho raha hai, this constant back and forth and everything. So then he was like, the moment she said it was getting toxic, then I was like, chalo bhai, it's time to let it go, hai na. क्या करते हैं कई बार ऐसी चीज़ें इसी तरह से हमें डील करनी पड़ती है. समटाइम्स इट्स ईजियर टू लेट थिंग्स गो इंस्टेड ऑफ जस्ट ड्वेलिंग ऑन देम, एंड समटाइम्स दैट रियली हेल्प्स विद डीलिंग विद द ब्रेकअप, राइट. तो गाइज, इट इज़ 9:50 ऑन द क्लॉक. मैं आपके साथ सिर्फ 5-10 मिनट और रहने वाली हूँ. आई होप क्या बोलते हैं, यू इन्जॉयड आज का शो. और जाने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं बोलना चाहूँगी. टेक्सास प्राइमरी केयर, पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर हैज़ केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी. दे हैव अ न्यू फ्रिस्को लोकेशन एंड इट्स कॉल्ड लनॉक्सी मेडिकल एंड दे आर इन फ्रिस्को. दे आर फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स और बहुत भी कुछ. They open 7 days a week. You can walk in anytime, 8 a.m. to 8 p.m. Texas Primary Care. So guys, this is it from me aaj ke liye. Main aapke liye sirf thode bahut gaane bajaungi and I will talk to you tomorrow. Tomorrow is Wednesday, halfway through the week, you guys. Tomorrow we're going to talk about what actually helps the brain heal. How does your brain actually heal? Nah, we're not talking about the heart, we're talking about the brain. Because remember, this is neuroscience and heartbreaks. So all the emotional pain, but related to the brain. Oh ho, kya rhyming tha yaar, main to soch ke bhi nahi plan kiya hai isko. Wah, kya shandar rhyming tha, iska gana banana chahiye. All the emotional pain, but from the perspective of the brain.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
1: Hi this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact Desi.
1: अब तू आ गई है।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? MMA बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे, जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: तुमने दुबई के चक्कर में हमसे बिया किया, हमसे कतई प्यार नहीं था।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: एक बार जो मैंने commitment कर दी, तो फिर सिर्फ fun Asia ही सुनूंगा।

नमी है। एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
1: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है?
0: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 12 pm to 3 pm. This weekend let the Flavor Lounge do the cooking.
3: Kaun hai ye log? Kahan se aate hain?
4: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट्स से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।

हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद देर लगेगी आने में।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: अरे क्यों?
1: नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: बेटी देखिए आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ।
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता।
0: नहीं आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

म्यूजिक MG, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़के।

0: 9FM Funasia. Funasia. Fun Fana Fun Done.
1: मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ.
2: अच्छा सुना सुना.
1: हाँ वो मेरी प्रैक्टिस नहीं अभी.
2: अगली बार प्रैक्टिस करके आना और किसी और के लिए मत गाना.

0: 20 साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Funasia
1: Hi this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio

0: हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी।
1: रिकॉर्डिंग्स लाइन अप है, शोज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, कौन करेगा ये सब? पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों।
2: जी सर, पता लगा रहा हूँ।

0: are capable of anything.
1: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
4: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
3: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
4: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
5: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
6: Sathiya. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
7: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
8: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
9: तुमसे मिलके दिल का है।
7: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
8: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: क्लास शुरू करें?
1: Your favorite music on your favorite radio.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कभी।
1: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
2: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर।
3: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
4: Official tax and finance partner, AG FinTax.
3: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: In association with Passion Health Primary Care.
5: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
6: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
7: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
8: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
10: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
11: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
12: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
13: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
14: भूख लगी
15: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
16: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
3: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
17: Kya matlab?
18: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
18: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज। दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी। कॉल तो करो 888-888-9914।
17: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ, विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर।
19: हाय, दिस इज शर्वरी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
20: Thank you so much for joining us on this lovely Wednesday morning. Ladies and gentlemen, it's the 16th of September and we are ready to get our show started. Sabse pehle, tareef us upar wale ki, jisne duniya banai, chaand sitare banai, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया, उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। As we get started with our program,

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
0: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पास या एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पास या बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
7: Sadia.
8: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
9: तुमसे मिलके दिल का है.
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: Thank you. And the winner is Robert Redford.
1: The Best Directing Oscar that he won in 1981. The handsome Robert Redford. And those, ladies and gentlemen, were some stories from the annals of history, and we are at 8 o'clock.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
8: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: Arre, Dallas ke aasmaan mein itne saare tara nahi. Business owners ke liye to sirf ek hi tara kaafi hai. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
10: वी नीड टू टॉक.
11: अब क्या हुआ?
10: Nothing. It's not you.
11: Oh no.
10: It's the distance.
11: Distance? We live 10 minutes apart.
10: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
9: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
12: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
13: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
14: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
13: एंड पिस्ताचियो लैम्ब चॉप्स,
14: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
15: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
16: जिंदगी एक रंगमंच है
17: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
18: होचो
19: होको
18: होचो
19: होको
18: होचो
19: इट्स होको.
20: अरे बस भी करो यार.
19: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
20: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
9: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
18: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
1: That wedding expo is happening this weekend. I'll make your social calendar and tell you what are the other events happening this weekend as well as the coming weekends. We'll do that a little bit later in the program. But let's get this hour started, and we're going to keep this one very musical. Welcome to the show if you're just joining us.

0: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
1: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 through 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज़ एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
2: अरे यार, घर मिल गया।
3: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
1: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
3: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
1: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
4: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 or visit astrologerishwar.com।
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।

0: 101 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Dad. प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
4: लैपटॉप में.
3: इन्वेस्टमेंट?
4: गूगल ड्राइव.
3: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
4: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
3: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
5: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
6: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
5: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
7: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hai. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zarur dekhiye. HEB ke naye DFW stores. Mid-Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jaye aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB. Here everything is better.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज़ इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
11: इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं हीरो.
13: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
14: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
14: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
14: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
15: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
16: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
17: डील कहाँ?
16: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
17: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है.
18: बेटा, 95% आए?
19: हाँ मम्मी.
18: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
15: मेरा?
18: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
15: वो
20: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
21: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
20: सिंपल, बसेरा ग्रैंड. वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
21: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
20: यस. Rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, और एक delicious buffet जहाँ choices ही choices हैं.
21: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
22: Family dinner हो या friends के साथ celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy together.
23: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
24: Let's get started with this final hour of our program on this Wednesday, the 16th of September.

0: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
2: ये क्या होता?
3: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है.
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, 'cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
11: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, 'cause miracles happen in Mirage.
12: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
13: हाँ.
12: घर रिलोकेट करनी है?
13: हाँ.
12: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
13: हाँ भाई हाँ.
12: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
14: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
15: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है?
16: Fikar not. We have the perfect solution.
17: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
17: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
18: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
19: Hello guys, this is me, Kinjal Dave, and you are listening and watching Fun Asia Radio.

0: elegance and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco, PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Ocho.
3: Hoko.
2: Ocho.
3: Hoko.
2: Ocho.
3: It's Hoko.
4: अरे बस भी करो यार.
3: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
4: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है.
0: एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
1: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
5: ये तारा वो तारा हर तारा.
1: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
6: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
0: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
7: जिंदगी एक रंगमंच है
8: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
4: वी नीड टू टॉक.
9: अब क्या हुआ?
4: Nothing. It's not you.
9: Oh no.
4: It's the distance.
9: Distance? We live 10 minutes apart.
4: Are it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
1: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
10: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
11: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

Good morning, DFW. It's 7 minutes past 10 o'clock and you're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Ramita and welcome to Gupshup Gully. Can I start today's show with a confession? You know, आज का टॉपिक शायद मुझे थोड़ा ट्रबल में डाल दे, लेकिन फिर सोचा चलो रिस्क लेते. टेल मी ऑनेस्टली, कब हमने सब हम सब ने इतनी सारी वियर्ड चीजों को नॉर्मल मान लिया. आजकल किसी कॉन्सर्ट में जाओ, लोग स्टेज से ज्यादा अपनी फोन स्क्रीन देख रहे होते. रेस्टोरेंट्स में जाओ तो खाना ठंडा हो जाता है, लेकिन इंस्टा स्टोरी और टैगिंग परफेक्ट होनी चाहिए, वो भी करेक्ट फिल्टर के साथ. और एक बात, हम किसी को मिलते हैं बोलते हैं लेट्स कैच अप सून, और फिर 3 महीने तक सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज ही लाइक करते. तो आज का गपशप यही है, व्हाट हैज बिकम सोशली एक्सेप्टेबल बट असल में बहुत ही वियर्ड है. आई नो मेरा आंसर तो क्लियरली रेडी है, आई विल बी डिस्कसिंग थ्रू आउट माई शो, आई एम हियर टिल 12:30. बट मुझे जानना है आप कौन सी ऐसी चीज सोचते हो जो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, बट हमने चलो मान लिया है क्योंकि हम ऐसे ही है यार. लेट्स मेक दिस फन. स्टूडियो का नंबर इज 972-235-5555 and I am waiting for your call.

You're listening to 104.9 FM Funny Shia Radio. मैं हूँ रुमिता and this is गपशप गली, जहाँ पे आज गपशप है what is actually weird but हमने socially इसे accept कर लिया. And I had my first caller today in the morning who is श्वेता. श्वेता ने call किया और उन्होंने कहा कि अब तो work from home के चक्कर में there is nothing, I mean no switch off, switch on mode. Life क्या बताऊं यार, कैसी हो गई है. ऑफिस में भी काम करो, घर के घर आके भी काम करो, कोई मी टाइम मिलता ही नहीं है. और अगर मी टाइम मिलना है मुझे, अगर मुझे लगता है मैं मेरे लिए कुछ टाइम निकालूं, तो दैट हैज आल्सो बीन ऑक्यूपाइड बाय अ स्क्रीन. एंड शी मेंशन दैट इट इज द रील वॉचिंग एंड इट्स नॉट जस्ट दैट द नॉर्मल थिंग, इट इज वेरी न्यू नॉर्मल राइट नाउ. बट क्या ये ऑकवर्ड नहीं है? बट इट इज सोशली एक्सेप्टेबल नाउ. इधर घर आओ, घर का काम करो, ऑफिस जाओ, ऑफिस का काम करो, घर आके भी ऑफिस का काम करो, एंड दैट कम्बक्ट स्क्रीन ऑल टाइम विथ अस. बट आई एम हैप्पी कि श्वेता ने अपने काम और रील वॉचिंग के बीच मुझे चुना है, यानी कि फनीशिया को चुना है, और उन्होंने बहुत ही स्वीटली टाइम निकाल के कॉल किया और अपने लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा हमारे साथ शेयर किया और पूरे DFW के साथ मैंने. तो यही तो है गपशप गली का कोर, इट इज द बैकबोन के आप और आपका और मेरा ये गपशप चलता रहे, ओनली ऑन फनीशिया रेडियो 104.9 FM. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच श्वेता. इसीलिए द नेक्स्ट सॉन्ग आपके रिक्वेस्ट में फ्रॉम द मूवी सैयारा. आई होप इट यू एंजॉय दिस सॉन्ग एज मच एज आई विल.

You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. This is Gupshup Gali with me, Rumita. And that was the sizzling Sharvari from the movie Alpha. वैसे Alpha के बारे में जितना कम discuss कर पाए हम उतना ही better है, क्योंकि discuss करना शुरू करूँ मैं तो awkward हो जाऊँगी. वैसे awkwardness की ही बात हो रही है regarding the things that are socially acceptable nowadays, but actually में बहुत ही weird है, बहुत ही awkward है. जैसे फिलहाल कल मैं Instagram scroll कर रही थी and मुझे सामने एक रील दिखा. एक लड़की रो रही थी. हाय, मैं तो इमोशनल हो गई. फिर अचानक दिमाग में आया कि यार फोन किसने सेट किया. सीरियसली, आई मीन कैमरा एंगल सेट, रिंग लाइट ऑन है, रिकॉर्ड बटन भी प्रेस्ड है एंड शी इज एक्चुअली रिकॉर्डिंग हर सेल्फ क्राइंग फॉर अ रील. एक्चुअली में आई मीन मैं जज नहीं कर रही, बट जेन्युइनली क्यूरियस हूँ ये सब चीज़ें कब नॉर्मल हुआ, कब हम इसको देख के इंजॉय करने लगे. आई मीन पहले हम डायरी लिखते थे, राइट, और अब हम इमोशंस अपलोड कर रहे हैं. क्या सोशल मीडिया ने शेयरिंग को ओवर शेयरिंग बना दिया है, या ये दुनिया ही ऐसी है. यार आई फेल वेरी ऑकवर्ड एंड इट इज एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल कि आई हैव टू सी एंड वॉच समवन क्राइंग ऑन सोशल मीडिया जस्ट फॉर सम व्यूज एंड एंगेजमेंट्स एंड इम्प्रेशंस. आप क्या सोचते हो, कॉल करके बताओ एंड लेट्स डिस्कस. यार 972-235-5555 इज द स्टूडियो नंबर. दिस इज रुमिता ऑन गपशप गली.

32 minutes past 10 o'clock, you're listening to 104.9 FM, Phanisha Radio. अगर आप drive कर रहे हो तो ज़्यादा influence मत हो जाना इस गाने से, drive safe, because अगर, मतलब भगवान ना करे, अगर आप किसी भी कार एक्सीडेंट में फंस गए, चाहे वो ट्रक के साथ हो या फिर किसी दूसरे गाड़ी के साथ, या फिर अगर आप कहीं गिर विर गए हो, तो डॉक्टर से पहले आपको अटर्नी का जो नाम है वो दिमाग में रखना है. एंड दैट नेम इज अटर्नी ओमर ख्वाजा. द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा इज एक्चुअली व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, बिकॉज आजकल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना इज वेरी स्ट्रेसफुल. सो आप अपने हीलिंग में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बाकी सारी चीजें वो संभाल लेते हैं. हु? अटर्नी ओमर ख्वाजा. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अनलेस he wins your case. So call kare for a free consultation, that is 469-300-5046. That's 469-300-5046, or you can visit attorneyomer.com.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पास या एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पास या बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
5: अजी सुनते हो?
6: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
5: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant, entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

हम पल जी कहाँ रहे, जी तो नहीं रहे एक पल, क्या कोई भी पल नहीं जी रहे, बस जिंदा है। यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो, दिस इज गपशप गली विथ मी रमिता, जहां पे गपशप चल रही है अबाउट द थिंग्स विच वी हैव नॉर्मलाइज्ड। बट असल में ना, थोड़ा ऊपर नीचे देखो तो थोड़ा सा वियर्ड तो जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सर्ट हो, स्कूल फंक्शन हो, या कोई भी ओकेशन हो, या कुछ भी स्पेशल दिखे, एक डबल रेनबो भी दिख जाए हमें ऑन द वे टू सम ग्रॉसरी, हम पहले फोन निकालते हैं और बाद में आंखों से देखते हैं। कभी कभी लगता है हम याद रखने के लिए रिकॉर्ड करते करते वो मोमेंट जीना ही भूल गए यार। और सच बताइए, कितने वीडियोज आज भी फोन में ही पड़ी है, बट दोबारा कभी उसको खोल के देखा है? हमें एक्चुअली हर मोमेंट रिकॉर्ड करना जरूरी है यार? किसी भी हद तक हम कुछ मेमोरीज सिर्फ दिल में भी रख सकते, और इस चक्कर में तो हमारा फोन स्टोरेज भी फुल। आई मीन गैलरी खोलो तो 18,000 फोटोज, 500 से ज्यादा स्क्रीनशॉट्स, 36 तो मीम्स ही मिल जाएंगे आपको। और जब किसी भी स्पेसिफिक फोटो की जरूरत होती है तब वो मिलती ही नहीं है। हम एक ही पोज में 27 फोटो ले लेंगे, फिर आधा घंटा डिसाइड करते करते टाइम बीत जाएगा कि यार अपलोड कौन सी करनी है। सीरियसली, मोमेंट कब जिएंगे? राइट हियर, राइट नाउ। जरा खोल के बताओ मुझे, आई मीन दिमाग खोल के बताओ, उसका पिटारा खोलो और मुझे बताओ आखिर हम जी कहाँ रहे।

दुनिया का सबसे पोलाइट झूठ क्या है? लेट्स कैच अप. आई मीन सीरियसली, सिर्फ ये भी नहीं है, और बाकी जो मैं अगले

दुनिया का सबसे पोलाइट झूठ क्या है? लेट्स कैच अप. आई मीन सीरियसली, सिर्फ ये भी नहीं है और बाकी जो मैं अगले चार पांच सेंटेंस बोलने वाली हूँ वो भी है. फॉर एग्जाम्पल लाइक, यार मिलते हैं, हाँ हाँ पक्की बात, नेक्स्ट वीक, और फिर अगली मुलाकात लाइक कब. हम कितना झूठ बोलते हैं एक दूसरे से, यानी कि दोस्तों से. कभी कभी वीक डेज पे स्पेशली हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, और यार लाइक एडल्ट लाइफ है ही इतनी अजीब. सब बिजी है, सब मिलना भी चाहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि कब मिलेंगे, क्योंकि किसी को पता नहीं लाइफ में हम सब बिजी इतने क्यों है. कैलेंडर हमारा अलाउ ही नहीं करता. इनफैक्ट सीरियसली मैं बताती हूँ, कल या परसों आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और उसने लिटरली अपना कैलेंडर खोल के मुझे दिखाया कि ये भाई देख, आई कैन नॉट मेक इट बिकॉज आई एम बिजी. यार बिजी होना ठीक है, बट दोस्तों के लिए अपने कैलेंडर्स वैसे मत देखो यार. आपके लिए मैं एक चैलेंज देख रही हूँ. शो खत्म होने के बाद, या फिर ये मेरा लिंक या अगला गाना खत्म होने के बाद, एक टेक्स्ट आपके लॉन्ग लॉस्ट दोस्त को जरूर करना, जिससे आप बहुत दिन नहीं मिले हो. उसको टेक्स्ट करना और सिंपली पूछना कि यार इस वीकेंड कॉफी पीने चले, और अगर रिप्लाई में डन आया तो डेफिनेटली मुझे कॉल करके बताना. लेट्स मेक दिस #new normal न्यू नॉर्मल ऑफ बींग सो बिजी एंड मेकिंग दिस सोशली एक्सेप्टेबल. वैसे इन रियल लाइफ इट इज अ लिटिल बिट रूड या फिर अ लिटिल ऑड, क्योंकि हम यार सब बिजी है इसी चक्कर में. You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Gup Shab Gali with me, Ramita.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
3: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
4: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
5: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta, veggie, pollo.

0: Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
1: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
1: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
1: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
6: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो.
8: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
5: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
9: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
5: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
9: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
8: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
5: हु आर द एम्प्लॉइज योर कंपनी सिंपली कैनॉट अफोर्ड टू लूज? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
10: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.

12 minutes past 11 o'clock, you're listening to Gup Shup Gully with me, Rumita, only on Funisha Radio 104.9 FM. Okay, Gup Shup Gully, एक workplace story ने internet पर काफी interesting debate start कर दिए. Billionaire attorney John Morgan की law firm Morgan & Morgan ने reportedly remote employees के लिए laptop camera और keystroke monitoring introduce की. और according to Morgan, इसके बाद ही एक हफ्ते में 23 एम्प्लॉयज ने रिजाइन कर दिया. अब उनका आर्ग्यूमेंट था सिंपल, अगर एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे, कंपनी को पता होना चाहिए कि काम हो रहा है या नहीं. बट एम्प्लॉयज की साइड का एक आर्ग्यूमेंट ये भी है और उनका सवाल सिंपल है कि अकाउंटेबिलिटी और सर्वेलेंस के बीच में एक्चुअली लाइन कहाँ है, वेयर इज देयर बाउंड्री. बिकॉज वर्क फ्रॉम होम का मतलब ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स फ्रॉम होम नहीं है, राइट? काम तो करना ही है और काम करते भी है यार, लेकिन क्या प्रोडक्टिविटी का मतलब हर की स्ट्रोक मॉनिटर करना होता है? ओ माय गॉड. इंटरेस्टिंगली आज ही है नेशनल वर्किंग पेरेंट्स डे, दैट इज 16th ऑफ सितंबर. टुडे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल वर्किंग पेरेंट्स डे. तो मुझे लगा इस कन्वर्सेशन को थोड़ा और आगे ले जाना चाहिए. आपको क्या लगता है? क्योंकि ना मिलियंस ऑफ पेरेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, flexibility at work isn't about the, you know, necessarily about the comfort. It is about also the productivity, jo bahut organizations samajh nahi paate. Yaar, work from home, kaam, flexibility, boundary, ye sare keywords thoda sa dimag mein rakhna chahiye. Ab Morgan & Morgan ne nahi rakha, but kya aapke organization ko aapki fikar aise hai? Sometimes it's simply about making life work and यही लोग समझते नहीं है. Let's see आपका इस मामले में क्या ख्याल है. Keep listening and stay tuned to Funisha Radio 104.9 FM.

ऑनेस्टली वर्किंग लाइफ के लिए इससे परफेक्ट रिलेशनशिप स्टेटस क्या हो सकता है? आई लव यू लाइक आई हेट यू. सुन रहे हैं आप 104.9 FM फनीशा रेडियो. दिस इज गपशप गली विद मी रमिता. यू नो मंडे मॉर्निंग अलार्म बजता है, आई हेट यू. सैलरी क्रेडिट होती है, आई लव यू. बॉस बोलता है कैन वी हैव अ क्विक कॉल, आई हेट यू. और ऑफिस में अप्रिसिएशन अगर मिल जाए, ओके फाइन, आई लव यू अगेन. और वर्किंग पेरेंट्स के लिए तो रिलेशनशिप और भी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज यू लव हैविंग योर करियर, योर ओन आइडेंटिटी, योर प्रोफेशनल स्पेस, बट उसके साथ साथ स्कूल ड्रॉप ऑफ्स, पिकअप्स, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, होमवर्क, डिनर, सब कुछ एक ही कैलेंडर में फिट कैसे कर लेते हो यार? इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब काम कम करना नहीं होता है. समटाइम्स इट सिंपली मीन्स के ट्रस्ट मी अनफ टू लेट मी मैनेज माई वर्क एंड माई लाइफ. सो वर्किंग पेरेंट्स, क्योंकि आज वर्किंग पेरेंट्स डे है, टेल मी आपका वर्क के साथ, अपने काम के साथ, अपने करियर के साथ, अपने ऑफिस के साथ, बॉस के साथ, मैनेजर के साथ रिलेशनशिप क्या है? आई मीन वो वाला रिलेशनशिप जानना नहीं है मुझे, सिर्फ आपका और आपके काम के साथ रिलेशनशिप कैसा है. इज इट लाइक आई लव यू आई हेट यू या परमानेंटली? इट इज, इट्स कॉम्प्लिकेटेड.

Well, I'll be happy to know कि आपकी नाव जो है वो चल पड़ी है और स्मूथली चल रही है, पर अगर आप कहीं पे अटक गए हो, यानी कि मैं आपके करियर की बात कर रही हूँ, आपके करियर में आप कहीं अटक गए हो, एंड इफ यू आर वंडरिंग इफ AI एंड वर्कप्लेस चेंजेस विल लीव यू बिहाइंड, या आप यू नॉट एबल टू कोप अप विथ योर करियर राइट एट दिस मोमेंट, तो इस वीकेंड, दैट इज ऑन द 19th ऑफ सितंबर इन डैलस, देयर इज अ वर्कशॉप गोइंग अराउंड एंड विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय द अवार्ड विनिंग करियर कोचेस एंड 4-time TEDx स्पीकर्स शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठ. And they are here for a powerful career growth workshop. You need, if you have to learn about how to reposition your value, aapke leadership skills ko aur bhi kaise strengthen kar sakte hain, aur aapke career ko simply accelerate kare with your clarity and confidence, then it is time for you to attend this workshop, which is happening on 19th of September. It is somewhere happening around Frisco. सारी डिटेल्स आपको मिलेगी इस वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको सिंपली रजिस्टर करना है. सो रजिस्टर एट playitfull.com/dallas, दैट इज playitfull.com/dallas, एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर पावरफुल करियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी. वो कहते हैं ना, थोड़ी अपने करियर को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने ग्रोथ को, यानी थोड़ा सा लिफ्ट करा दो यार. You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. This is Gupshup Gali with me, Ramita.

0: You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Rumita. जहाँ पे हमारी गपशप about a lot of things are going around और आगे भी चलेगी अगले एक घंटे तक. So stay tuned and keep listening to your Dallas की धड़कन.
1: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
2: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh... उमर ख्वाजा.
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
4: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी.
5: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
4: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
5: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
6: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
3: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
6: Barista House, richness of biryani bliss.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
9: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
10: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवनस आस्किंग लंच में क्या है.
9: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
8: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
8: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, X-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiserway, Suite 205, Frisco.
12: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Funisha.

You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gup Shup Gali with me, Rumita. और ये गाना था एक request from a listener जो पिछले तीन दिन से ये गाना request कर रहे थे मुझे, but due to some reasons or circumstances मैं ये गाना उनके लिए play नहीं कर पाई. और ताज्जुब की बात यह है कि वो कभी अपना नाम reveal नहीं करते, रोज फोन करते और ये गाना रिक्वेस्ट करते हैं. आई एम श्योर आज आपको वो खुशी मिली होगी जितनी खुशी मुझे मिली है आपके लिए गाना प्ले करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में आप हमारे जो लिसनर्स हैं आपके लिए ही हमारा स्टेशन है, आपके लिए ही हम अपने यू नो शोज प्रिपेयर करते हैं, गाने सेलेक्ट करते हैं. ऑल इज टू मेक यू हैप्पी एंड मेक यू फील, आई मीन मेक योर डे एक्चुअली, एंड एन्जॉय द शोज दैट यू लिसन. एंड दिस इज Phanisha नेटवर्क एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. बढ़ते हैं आगे इस शो में, इस गपशप में. टाइम हो चुका है 11:38 AM ऑन अ वेंसडे मॉर्निंग. वी आर स्पीकिंग टू ईच अदर, यानी कि आप लोग भी कॉल करते हो, मैं तो हमेशा बकबक करती हूँ कॉल पे, आई मीन माइक पे. वैसे अभी आपने अगर अपना लंच प्लान नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, डिनर का प्लान मैं आपके लिए बना देती हूँ. क्योंकि अगर बटर चिकन, बिरयानी, पनीर टिक्का या दाल मखनी आपका यू नो डिनर मेन्यू, योर टाइप ऑफ डिनर मेन्यू लगता है, देन स्ट्रेट अवे हेड टू तंदूरी फ्लेम विच इज लोकेटेड इन गार्लैंड. एंड नाउ यू हैव वेरी you know valid reason to go there, because they are having the flame hour Monday through Thursday from 5 to 7 PM where you can order any two entrees aur aapko uske sath milega ek one complimentary appetizer with it. Yani ki Monday to Thursday 5 to 8 PM actually you can order any two entrees and receive one complimentary appetizer. Baki jankari aapko unke वेबसाइट पे मिल जाएंगी, विच इज तंदूरी फ्लेम टेक्सस, आई मीन TX, तंदूरी फ्लेम TX.com. सो डिनर प्लान्स आज का मैंने आपका सॉर्ट कर दिया.

You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. This is Gup Shup Gali with me, Rumita. And that was the Sheere Baloch 2.0. This is Ranveer Singh. Aur kya lag rahe the yaar. Kuch din pehle maine ek paparazzi video dekha and wow. अभी people talk about would be mothers about their glow, about how they are, you know, छाए हुए रहते हैं everywhere they are. There actually mom to bees, but nobody talks about the fathers, but I will, because aaj hai National Working Parents Day, or at this moment to be father and he has worked this amount of you know, he's created this charisma and he had gifted us Dhurandhar's part 1 and part 2 in the span of a year. So kudos to him for bringing that Ranveer Singh, the Ranveer Singh from inside again, yet again, because beech mein kahin wo dormant ho gaya tha, chup gaya tha. So thank you so much Ranveer Singh for giving us this two wonderful films. That is Dhurandhar as well as Dhurandhar Part 2. And I wish all the very best for you to be a father again. बाद जब parents की होती है, मम्मी पापा की हो रही है, because again, as I mentioned, today is, you know, Working Parents Day. एक funny realization मुझे थोड़ी देर पहले हुआ कि बचपन में हम सब ने एक बार ये जरूर बोला था कि मैं बिल्कुल अपने मम्मी के जैसे या पापा के जैसे नहीं बनूंगी. और फिर हमारा जो एडल्ट लाइफ स्टार्ट हुआ, एक दिन अचानक से यू रियलाइज कि मैं बिल्कुल अपने मम्मी जैसे ही बात कर रही हूँ या मैं बिल्कुल अपने पापा जैसा ही बिहेव कर रहा हूँ. और जैसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, जैसे ग्रॉसरी स्टोर जाते ही ऑटोमेटिकली प्राइस कंपेयर करना. आई नो इट्स अ नेसेसिटी ऑफ एडल्ट लाइफ, बट कहीं ना कहीं हमने तो अपने मम्मी पापा से ही ये बात एक्सट्रैक्ट किया है, राइट? लाइट ऑफ करके रूम से बाहर निकलना, प्लास्टिक बैग्स, देसियों का जो हैबिट होता है प्लास्टिक बैग्स संभाल के रखना, आज तक समझ में नहीं आया कहाँ काम आता है, बट फिर भी कभी काम आ जाएगा, ये थॉट प्रोसेस हमेशा चलता ही है. सो लेट मी नो आपका कौन सा हैबिट है विच यू हैव अक्वायर्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स, गुड और बैड आई डोंट नो, बट आई एम ओपन टू योर सजेशंस एंड योर स्टोरीज. सो स्टूडियो का नंबर इज 972235555. दिस इज गपशप गली विथ मी रमिता.

रेडियो की सबसे खूबसूरत बात क्या है, कभी कभी एक फोन कॉल पूरा मूड बना देता है। अभी थोड़ी देर पहले हमें एक बहुत ही प्यारा सा कॉल आया। उन्होंने कहा कि मुझे आपका शो बहुत पसंद है एंड सेड वेरी गुड नाइस थिंग्स अबाउट द शो एंड ऑनेस्टली आपके कॉल्स आर मैसेजेस ही हमारे दे मेक आर डे एज वेल। और उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी की है। वो कह रहे थे कि मेरी वाइफ मेरे लिए बिल्कुल कयामत है। अब इसका मतलब दो हो सकता है, या तो वो इतनी खूबसूरत है कि हाय नजर ही नहीं हटती, या फिर घर पहुंचते ही उनकी आज तो क्लास लगने वाली है। जो जोक्स अपार्ट, दिस वन इज ब्यूटिफुली डेडिकेटेड टू सोहेल्स वाइफ मरियम टुडे। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड कॉलिंग अस एंड participating in the conversation, in the gupshup rather, in Phoenicia Radio 104.9 FM. This song goes for Mariam from Sohail.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Ek aur laddu le lo.
7: Thodi aur biryani.
6: Are America jaake thodi milega.
8: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
9: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स। दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259 हेल्थ प्राइमरी केयर।
10: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
11: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का

0: New love
1: and pistachio lamb chops.
0: Full on flavor ka fusion.
2: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
3: ये तारा वो तारा हर तारा।
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
5: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
6: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
5: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
6: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
5: और एंटरटेनमेंट,
6: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
5: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
6: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
7: बेटा 95% आए?
8: हाँ मम्मी।
7: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
9: मेरा?
7: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
9: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: सेम ऑर्डर अगेन? सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी? टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fanesha Radio.

0: अरे मैडम आइए आइए, कैसी हैं आप? ये रहा आपकी शादी का कार्ड। अरे वाह,
1: लाइक इट?
2: या इट्स नाइस।
3: भैया खुद डिजाइन करके गए थे?
0: ये रहा डिजाइन।

इश्क रिस्क सुन के तो लगता है प्यार में थोड़ा रिस्क लेना बनता है, लेकिन अब जो रिस्क मैं देने वाली हूँ उसका इनाम भी है, रिवॉर्ड भी है, यानी कि गिव अवे भी है। टाइम फॉर द गिव अवे ऑफ फन पिज्जा किचन वेयर यू कैन विन अ $10 गिफ्ट कार्ड एंड एंजॉय एनी पिज्जाज या फिर गार्लिक ब्रेड या फिर चिकन विंग्स या फिर कोई डिजर्ट्स, बट आई वुड रेकमेंड द मैक्सिकन फ्लेवर्ड पिज्जा विच दे हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस टू ट्राई इट। पर आप ट्राई तब भी ना कर पाओगे जब आप ये गिव अवे जीतोगे। आई मीन नॉर्मली भी कर पाओगे बट गिव अवे का एक अलग मजा होता है। सो आई एम गोना गिव यू 3 क्लूज एंड यू हैव टू गेस द नेम ऑफ दिस मूवी। सिंपल है, तो उसके बाद आपको एक और चीज करना है, वो कि स्टूडियो में कॉल करना है और मुझे ये करेक्ट आंसर देना है। स्टूडियो का नंबर इज 972-335-5555। तो चलिए क्लू नंबर 1। इस मूवी का हीरो दुनिया देखना चाहता है और कमिटमेंट से ज्यादा उसे एडवेंचर पसंद है, और इसी फिल्म के बाद लोगों ने सोलो ट्रैवल करना थोड़ा ज़्यादा शुरू कर दिया। और भी एक चीज़ जो शुरू की है वो मेरा क्लू नंबर 2 है, जो कि है ट्रैकिंग ट्रिप्स। एक ट्रैकिंग ट्रिप से शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे वो प्यार में बदला और कुछ सालों बाद एक वेडिंग रीयूनियन में स्टोरी आगे बढ़ी, है ना। और क्लू नंबर 3 इज हीरो का निकनेम एक क्यूट सा रैबिट है। चलिए इससे ज्यादा क्लू तो मैं नहीं दे सकती। इन ऑर्डर टू गेस द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस मूवी, अगेन स्टूडियो का नंबर इज 972-235-5555। आप करो गेस, दो मुझे सही जवाब। तब तक मैं थोड़ा म्यूजिक सुन लेती हूँ, आप भी सुन लो।

सेल्फी का तो पता नहीं, बट मेरे पास जो $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन हो है वो मैं देने वाली हूँ टू रूपल सोनीता. कंग्रेचुलेशंस रूपल, यू हैव वन दिस गिव अवे. एंड यस, द नेम ऑफ द मूवी इज ये जवानी है दीवानी. अब इससे सिंपल क्विज तो कभी किसी बॉलीवुड लवर ने या मूवी बफ ने सुना ही नहीं होगा, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, सुनते रहो 104.9 FM एंड स्पेशली गपशप गली, क्योंकि गिव अवेज गपशप सब एक साथ मौजूद है ना, मुफ्त मुफ्त मुफ्त.

0: एवरी टाइम आई लिसन टू दिस सॉन्ग, ये गाना सुनने के बाद ही लगता है यार कहीं तो टिकट काटू और चली जाओ घूमने. यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, दिस इज गपशप गली विद मी रमिता. और जैसे कि मैं कह रही थी, कुछ गाने हमें सफर याद दिला देता है और कुछ हमें जिंदगी के वो स्पेशल मोमेंट्स जो हमेशा के लिए याद बन जाता है. और वैसे भी लाइफ का हर माइलस्टोन के साथ एक याद तो डेफिनेटली जुड़ी होती है, चाहे वो इंगेजमेंट हो, शादी हो, एनिवर्सरी हो, या फिर किसी अपने को बिना किसी वजह से सरप्राइज कर देना हो. और ऐसा ही एक मोमेंट को और भी खास बनाएगा श्री कृष्ण ज्वेलर्स, वेयर यू कैन डिस्कवर द स्टनिंग हैंड क्राफ्टेड कलेक्शन ऑफ गोल्ड, डायमंड्स, पोलकी, सॉलिटेयर एंड सो मच मोर, विद ब्यूटिफुल डिजाइन फॉर एवरी ओकेशन एंड एवरी स्टाइल. और इस सेलिब्रेशन को और भी स्पेशल बनाने के लिए श्री कृष्ण ज्वेलर्स इज सेलिब्रेटिंग दिस ब्यूटिफुल 10th एनिवर्सरी, विच इज 10 स्पार्कलिंग ईयर्स इन डैलस विद 10 स्पेक्टेक्युलर ऑफर्स इंक्लूडिंग फ्री सिल्वर एंड गोल्ड गिफ्ट्स अलॉन्ग विद एक्साइटिंग सेविंग्स ऑन गोल्ड, डायमंड एंड सॉलिटेयर ज्वेलरी, विच इज वैलिड till 17th of September, that is till tomorrow. So Sri Krishna Jewelers, which is located on the main street in Frisco, is your go-to visit if you want to surprise someone else or simply yourself.
1: Sona? Sona? Sona? Sona?

By God, almost 3 years होने को आए, 3 साल होने को आए, but अभी भी ये hook step completely perfect नहीं हुआ है. It's 24 minutes past 12. You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. यानि कि गपशप गली अपने destination में पहुंच गई है. आज की गपशप में बहुत मजा आया. Seriously, from all those socially acceptable but actually weird habits to your hilarious confession. On call, जो आप हमें कॉल करके अपने स्टोरीज शेयर करते हैं. Honestly, you guys made today's show even more entertaining for me. जाने से पहले एक quick message for all the Texas business owners. If you're looking for a smarter commercial energy solution, you definitely have to trust only one name, और वो की है Tara Commercial Energy, who is proudly serving Texas businesses since 2002. With competitive rates, reliable service और उनकी customized energy plans. For more information, call करें 844-428-2808. That's 844-428-2808. Or simply you can visit taraenergy.com. This is Ramita. That is Gapshap Gali with me, Ramita. Signing off from today's show. अब आपसे इजाजत चाहती हूँ. कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए गपशप और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए फन एशिया रेडियो. एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे एंड लेट द म्यूजिक प्ले.

0: on the right track.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Documents ya parcel bhejni hai?
4: हाँ.
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ.
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ.
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
5: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sif India nahi, USA aur dunya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
7: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
8: लैपटॉप में।
7: इन्वेस्टमेंट?
8: गूगल ड्राइव।
7: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
8: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
7: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
9: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
10: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
9: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
11: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
11: ये क्या होता?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
14: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
15: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navnita Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
16: Call Namita Khemka at 347-449-4242.
17: Phone uthaye, number dawaye. 347-449-4242.
18: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
19: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
20: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
21: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
22: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
23: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
24: तुमसे मिलके दिल का है।
22: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
23: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क, इश्क है, इश्क, इश्क ये, इश्क, इश्क है।

हेलो नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून डैलस, दिस इज योर होस्ट आयुषी और दोपहर के 12:30 बजे स्टूडियो में हम पहुंच गए हैं आपके साथ दिन की शुरुआत करने। सुबह फेस्टिव सीजन चल रहा है और चारों तरफ धूम मची हुई है, रौनक लगी हुई है और हर तरफ मोदक मिठाइयां और लड्डुओं का सीज़न है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों का भी फेस्टिव सीज़न मेरी तरह जा रहा होगा खाते पीते और मोटा होते हुए। नहीं हो रहे हैं तो खाइए पीजिए एंजॉय करिए, ये 2-3 महीने भूल जाइए वेट लॉस को और फेस्टिविटीज़ का मज़ा लीजिए। शो को शुरू करते हैं, स्टूडियो का नंबर बता रही हूँ 9722355555। कॉल करिए, अपने पसंद के गाने सुनिए, फरमाइश दीजिए, मैं प्ले करूँगी आपके लिए।

0: मस्ती।
1: तो भैया आपके सपनों का घर आपके बहुत ही करीब है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज ने बहुत सारी फैमिलीज को हेल्प किया है नेशन वाइड विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग और रीफिनेंसिंग। यू कैन कॉल देम एट 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com। ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन। और इनको कॉल करिए और अपने सपनों के घर के एक कदम करीब जाइए। फिलहाल आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम पे, और हम ले रहे हैं आपकी फरमाइशें, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंद के गाने चलेंगे अभी हमारे इस सेगमेंट में। उसके बाद चर्चा होगी, किसी न किसी बात पर जरूर होगी। फिलहाल नंदनी जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना फिल्म धुरंधर से।

This part of our show is proudly brought to you by AZ FinTechs, offering trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping, and business advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com. agfintechs.com today. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, अगली फरमाइश की तरफ चलते हैं. एंड आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए. फरमाइशों की लिस्ट लग चुकी है, लेकिन अभी एक ऐसा गाना आ गया ना जिसको मैं सबसे ऊपर प्ले करूंगी सारी फरमाइशों को पीछे रखते हुए. ये वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स है अभी इस टाइम पर, और इसको रिपीट पे सुनते हैं हम. सुबह उठते से ही एलेक्सा इसको प्ले कर रही होती है, और सोते तक एक बार तो सुन के ही सोते हैं. ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द सीरीज मुसाफिर कैफे, जिसका दूसरा पार्ट हमको देखना है, क्योंकि हमको लगता है कि आएगा और उसमें क्या होगा ये भी हमको पता है. ऐसा मेरी फीलिंग है, देखते हैं कितना सही होता है. तो पहले गाना सुनते हैं, फिर अगली फरमाइश प्ले करेंगे, क्योंकि अभी सेगमेंट चल रहा है फरमाइशों का. सो सिर्फ और सिर्फ आपके पसंद के गाने, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, किसी को याद करना है, किसी पर प्यार आ रहा है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो भी आप गाने के जरिए उसको जता सकते हैं. कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे 9722355555 और दीजिए अपनी पसंद के गानों की फरमाइशें. फनेशिया 104.9 FM पे आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को.

0: रेखा भारद्वाज की आवाज़ और ये गाना दिल के हर तार को छेड़ देता है। ऐसा ही आपको भी लग रहा होगा ना, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा ये गाना है। एंड ये मुसाफिर कैफ़े का गाना था। इसके सारे गाने बहुत ही प्यारे हैं, सीरीज़ भी बहुत अच्छी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। एक पूरा सेगमेंट किया था मैंने इस सीरीज़ पे, और इतने कॉल्स आए थे ना मुझे उस दिन कि मेरा तो दिन ही बन गया था। सो दिस सीरीज इज वर्थ वॉचिंग एंड वर्थ टॉकिंग अबाउट एंड वर्थ वेटिंग टू सी कि होता क्या है, बिकॉज मेरे लिए एंडिंग बहुत एब्रप्ट थी। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले गाने की तरफ चलते हैं। उसकी भी फरमाइश आई हुई है हमारे पास, लेकिन उसके पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं कि अगर आप H1 पे हैं, F1 पे हैं, L1 पे हैं, या फिर किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे हैं, और अगर आप प्लान कर रहे हैं US में परमानेंट रेसिडेंसी का, तो प्लीज़ कॉल करिए लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता, दे कैन हेल्प यू। अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीज़ाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज, पर्म लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम, ईमेल info@seemamehtalawfirm.com, दैट्स info@seemamehtalawfirm.com, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता। चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलें। ये भी अभी बिल्कुल नया वाले फिल्म का गाना है, और ये फिल्म भी काफ़ी चर्चा में रही है, काफ़ी अच्छी है एक्चुअली, इम्तियाज़ अली की मैं वापस आऊँगा। एंड आई एम प्लेइंग दिस ट्रैक ऑलमोस्ट डेली इन द स्टूडियो। सो हियर इज दिस ब्यूटीफुल नंबर फ्रॉम मैं वापस आऊँगा।
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? तो वैसे ही लगेंगी। मलिका तिल फरीद
2: किसमिस यारा लाई मस्कारा अखियां लटका
1: शादी कर सकते हैं।
2: क्वीन विक्टोरिया की तरह
1: कैसे दिख सकती हैं आप? तो वैसे ही लगेंगी। मलिक

So here was this beautiful song from the movie मैं वापस आऊँगा, ए आर रहमान का म्यूज़िक. और ये जो गाना है ये मैं रोज़ प्ले कर रही हूँ जैसा कि मैंने बताया. अगले गाने की फरमाइश भी आ चुकी है, तो जल्दी से आपको लेकर के चलते हैं उस गाने की तरफ.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
11: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
7: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford

0: to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
1: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
0: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
2: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
4: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
3: सच में सब संभाल लेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
6: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
7: Zindagi ke kai rang. Fun Asia Radio ke sang.
8: तो स्वागत है आपका इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम पे. और भाई हमारे शो में ना ऐसा होता है हर बार कि कोई ना कोई टॉपिक निकलता है और उस पर चर्चा होने लगती है, तो मुझे लग रहा है मुझे इस सेगमेंट का नाम ना आयुषी के साथ चर्चा ऐसा कुछ कर देना चाहिए. बताइए किस टाइप का नाम रखा जाए इस सेगमेंट का. अगर आपको लगता है कि चर्चा ज़रूरी है, डिस्कशंस आर इम्पॉर्टेंट, देन डू कॉल मी ऑन द स्टूडियो नंबर एंड लेट मी नो. फिलहाल ब्रेक से वापस आए हैं, मेरे दिमाग में सुबह से एक चीज़ चल रही थी, बिकॉज यू नो मैं बिहार से हूँ, बिहारी हूँ, तो बिहार वाले जो रील्स होते हैं ना वो मेरे एल्गोरिदम में घुस गए हैं इस कदर कि हर दिन वही दिखता है. सो रिसेंटली एक मूवी का ट्रेलर आया है और मूवी का नाम है वन. इसमें तमन्ना भाटिया हैं और सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं. एंड दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन मंदिर विच इज़ इन बिहार और वन देवी हैं और किस तरह से उसके राउंड कहानी चलती है उसके ऊपर है. बट इसमें छठ पूजा का एक गाना है जो कि विद इन अ कपल ऑफ डेज जिसपे 41 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं और स्पेशली बिहारीज आर सो हैप्पी अबाउट इट बिकॉज यू नो बॉलीवुड में पहली बार छठ पूजा के बारे में कोई गाना बना है और उस पर कोई मूवी है, कोई सीन्स हैं, थोड़े क्लिप्स हैं. तो वो मूवी देख के पता लगेगा, वॉच द स्टोरी. बट हाँ, वहाँ पर उसके ऊपर है तो बिहारीज आर रियली हैप्पी अबाउट इट. इवन अम्मी एज अ बिहारी इज वेरी वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट एंड हैप्पी अबाउट इट कि फाइनली इतने साल बाद हम सारे त्यौहार देखते हैं, नवरात्रि देखते हैं, गणपति देखते हैं, दही हांडी का सेलिब्रेशन देखते हैं मूवीज में, उसके ऊपर गाने बन रहे हैं. बट इज द फर्स्ट टाइम वेयर इन छठ पूजा हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय बॉलीवुड और दिखाया जा रहा है. तो बड़ी खुशी हुई इस बात को, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी उठे मन में. लोगों ने बनाया है इसके ऊपर तो पूजा और जो हमारे भगवान की तरफ आस्था है उसके ऊपर सवाल है. उस सवाल की तरफ जाएंगे हम और चर्चा करेंगे उसके ऊपर, लेकिन पहले एक गाना सुना देते हैं जिस पे 41 मिलियन व्यूज आए हैं विद इन अ कपल ऑफ डेज.
9: तुम्हारी नहीं है, मेरी आस्था तो है. मुझे पूरा विश्वास है कि छठी मैया हमें आशीर्वाद जरूर देंगी.

ओके ही वॉज दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी वन, और इसमें छठ पूजा का गाना पहली बार बॉलीवुड में आया है. एंड छठ ना हम बिहारियों के और ईस्टर्न यूपी वालों के दिल के बहुत करीब है. ये ऐसा एक त्यौहार है जो कि ऑलमोस्ट हर घर में मनाया जाता है, और हर बिहारी ना इसके अराउंड नॉस्टैल्जिक हो जाता है. तो जब ये गाना आया तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा दैट फाइनली बॉलीवुड में भी एक गाना बना है इसके पीछे, और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गाना है. एंड इट हैज़ दिस मूवी इज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाई एकता कपूर, और विशाल मिश्रा की आवाज़ है इस गाने में. सो एनी वेज, यू आर टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से ना हम ये जो फेस्टिव सीजन आता है उस तरह से भगवान की आस्था में लग जाते हैं. पूरे टाइम भागा दौड़ी चल रही होती है लाइफ में, लेकिन इस समय सब कुछ स्लो डाउन कर लेते हैं हम लोग मोस्टली, क्योंकि हमें घर में पूजा करनी होती है, घर का एनवायरनमेंट बदल जाता है. ऐसे लगता है कि एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी है हमेशा. ठीक है, घर चल रहा है कैसे भी है, फैला पड़ा है, बिखरा पड़ा है, कुछ नहीं करेंगे. बट द टाइम फेस्टिविटीज स्टार्ट, विच आई थिंक इज़ दिस टाइम ओनली, जब जन्माष्टमी शुरू होता है, गणपति आते हैं, उस समय से घर में अलग रौनक होती है, अलग चहल पहल होती है. और हम लोग यहाँ US में होकर के हमारे पास वीकडे से लेके वीकेंड तक टाइम नहीं होता है, कोई भी समय पूछ लीजिए, हम लोग कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं. तो वो जो एनर्जी फील होती है, क्या वो एक्चुअली आप लोगों को भी ऐसे लगता है कि यू नो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट त्योहारों को मनाना, उसको उसी तरह से करना जैसे हम घर पे किया करते थे, वो ज़रूरी है कि नहीं, और चेंजेस इम्पॉर्टेंट है या नहीं? जैसे अभी मैंने एक रिसेंटली एक टॉपिक पे बात की थी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, जहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा कि यू नो मैंने बोला था कि निर्जला फास्ट हम करते हैं तीज में, और फिर हम लोग धीरे धीरे यू नो अब चेंज करना चाहिए अभी के टाइम के हिसाब से, आगे की पीढ़ी के लिए उसको बदलना चाहिए. तो बहुत लोगों ने मुझे कहा आप गलत बोल रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. मुझे लगता है कि हमें चीज़ों को ईज डाउन करना चाहिए, अपने कल्चर से जुड़े रहना चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे घर का माहौल बदलता है. लेकिन कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ईजी कर देते हैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, नहीं तो ना ये बच्चे जो आजकल के हैं ये बहुत सवाल पूछते हैं. वो हमारी तरह शरीफ नहीं कि मम्मी ने बोला है तो कर लो, वो पूछेंगे मम्मा क्यों, वाई डू वी हैव टू डू दिस, एंड वी नीड टू गिव अ सॉलिड एक्सप्लेनेशन. वी कैन नॉट जस्ट से बेटा हम लोग करते हैं इसलिए कर लेंगे, नहीं, उनको ना लॉजिक चाहिए. तो ये बदलाव ज़रूरी है या नहीं है, ये है मेरा सवाल. कहानी तो मैं बहुत मैंने बोल दी है और बता दी है, और बहुत बातें करती हूँ मैं, बताइए आप लोगों को. बट एनीवेज, सवाल यही है कि छोटे छोटे बदलाव ज़रूरी हैं कि नहीं है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए. दिस इज़ द क्वेश्चन आई एम लीविंग राइट नाउ, एंड आप कॉल करके मुझे इसका जवाब दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. मुझे शो के दौरान इंस्टा पे भी बहुत मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे भी बहुत मैसेजेस आते हैं, एंड आई यूज टू मिस देम, बट नाउ आई मेक श्योर कि मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक खुला रहे वाल आई एम डूइंग द शो, बिकॉज वहाँ से भी लोग मैसेजेस करते हैं शो के बाद या पहले या दौरान भी. सो आई लव दैट टू. अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं. फिलहाल स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555, और मैं अभी भी रिक्वेस्ट ले रही हूँ. अगली फरमाइश विनय जी की है और अरिजीत सिंह की आवाज़ में, ये बहुत ही प्यारा सा गाना उनके लिए.

Here was this beautiful song in the voice of Arijit Singh and Shilpa Rao. बहुत ही प्यारा सा गाना लाल सिंह चड्डा फिल्म से था आप लोगों के लिए. और हम फेस्टिविटीज पूजा पाठ की बात कर रहे हैं कि किस तरह से समय के साथ बदलना चाहिए. देखो पूजा पाठ तो करते रहना चाहिए, लेकिन जो फास्टिंग है और जो चीज़ें हैं उनके जवाब हमारे पास होने चाहिए, ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन को बता सके, समझा सके. बताना बहुत ज़रूरी है यार, हम लोग ना बहुत कुछ बड़े होने के बाद सीखे हैं. एंड आई थिंक आने वाली जनरेशन को पता रहना चाहिए कि क्यों ये सब हो रहा है, अदरवाइज बहुत सवाल पूछेंगे बच्चे. मुझे तो लगता है अभी से ही पूछने लगी है मेरी वाली, मम्मा हम क्यों कर रहे हैं, मम्मा हम क्या कर रहे हैं. सो क्यों क्या का जवाब हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है. फिलहाल फनीशा पे चल रहा है खूबसूरत गानों का सफ़र, और इस बार ये सिर्फ और सिर्फ आपकी फरमाइश पे है. आगे बढ़ने के पहले पहले आपको ज़रूरी जानकारी दे दें, नो इंश्योरेंस और पैशन हेल्थ इज़ आउट ऑफ योर नेटवर्क. अगर ऐसा है देन यू कैन गेट अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विथ पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट ₹85 अ मंथ. जी हाँ, $85 अ मंथ में, इंक्लूडिंग प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड मोर. यू कैन कॉल और टेक्स्ट देम एट 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ फिजिशंस डॉट कॉम. दिस प्रोग्राम इज नॉट हेल्थ इंश्योरेंस, एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई. ऑल्सो देयर फ्रिस्को लोकेशन इज ओपन ऑन सैटरडेज एंड संडेज टू. सो दिस इज सो नाइस, सैटरडे और संडे को भी इनका फ्रिस्को लोकेशन ओपन है, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं. I'll repeat the number. It's 214-666-6259. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले गाने की तरफ चलते हैं. उसकी फरमाइश आ गई है, लेकिन उसके पहले अभी हमारी एक कॉलर हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने कॉल किया था, श्वेता. सो श्वेता इज फ्रॉम बंगाल, आर नेबरिंग स्टेट बिहार का. तो वो मुझसे पूछ रही थी, यार हम छठ पूजा होते हुए देखी है, पर किसकी पूजा होती है, कैसे होती है, क्या होता है. सो आई टोल्ड हर कि यू नो ये दिवाली के बाद होती है छठ पूजा, और छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा होती है और छठी मैया के थ्रू होती है, बिकॉज छठी मैया इज सूरज सन गॉड्स सिस्टर. And she is the goddess of goddess of nature, and she is a protector of children. ऐसा कहा जाता है. और बहुत ही कठिन व्रत होता है अगर इसके बारे में जिनको नहीं पता. It's a 36 hours of fast without food and water, and it is followed in a very strict way. बहुत सारे precautions, बहुत सारे मतलब इतने सारे नियम कानून हैं कि भैया हम लोग डरे रहते हैं. अब ये नियम कानून जो बनाए हुए हैं ना, इससे कोई पंगा नहीं लेता है वहाँ हमारी तरफ, कोई बदलने की कोशिश नहीं करता है. और इसको बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे किया जा रहा है जनरेशन से. छोटे मोटे ऑल्टरेशंस किए गए हैं समय के साथ, बट कोई बड़ा बदलाव लाने की हिम्मत नहीं करता है. एंड मैं भी हिम्मत नहीं करती हूँ, बिकॉज ये कुछ चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए, जिसमें से ये है, ये पूजा है हमारी, ये ऐसे ही होनी चाहिए जैसे होते आ रही है. एंड यस, आजकल तो डालस में भी बहुत धूमधाम से इसका सेलिब्रेशन होता है. कम्युनिटी इज डूइंग इट, सो दैट्स अ ब्यूटिफुल सेलिब्रेशन दैट हैपन्स एवरी ईयर. एंड इट्स राइट आफ्टर 6 days ऑफ दिवाली, क्योंकि दिवाली अमावस्या को पड़ती है और छठी मतलब सिक्स्थ, सो छठे दिन होता है. दैट्स अ ह्यूज सेलिब्रेशन जो यहाँ पे भी होता है. तो बस आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और दूसरे जगह की चीज़ों को जानना और समझने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि कैसे होता है. एनीवेज मेरी बातें ऐसे ही चलती रहेंगी, गपड़ गपड़ चपड़ चपड़ कुछ ना कुछ बोलते रहूँगी आपसे, बात फ़ोन पे करूँगी और यहाँ आकर के बाकियों को बताऊँगी क्या बातें हुई. तो भाई बहुत मज़ा आता है जब आपका कॉल आता है, ऐसे ही कॉल करते रहिए. स्टूडियो का नंबर है 9722355555. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनेशिया 104.9 FM पे. फिलहाल ये गाना सफ़ी की फरमाइश पर है.

सो भाई ये मौका है आपका $10 ऑफ जीतने का ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर, ठीक है? प्लस यू कैन एंजॉय द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस, रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली, लोकेटेड ऑफ मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन. विजिट चंडीगढ़ बाइट्स फॉर डिटेल्स. भाई मैं गई हूँ, खाना बड़ा टेस्टी है, कुलचे मज़ेदार हैं. ओके, फॉर ऑल लिसनर्स, आपको प्लीज़ ये ध्यान रखना है कि आप you have not won this giveaway on any other Fanoushia show in the last 1 month, so you can only be winner once a month. ठीक है, आप लोगों के लिए ये जानकारी. तो चलिए जल्दी से अब एक बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा सवाल पूछते हैं, जवाब दीजिए और लेके जाइए $10 ऑफ ऑन अ बिल ऑफ $50 और मोर चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से. सो हियर इज दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे जो कि है 972-235-5555 और जीतिए $10 ऑफ. ये रहा वो गाना.

0: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
1: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज़ इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
5: वेट, इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं ही तो.
7: How may I help you?
8: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
7: Fikar not, we have the perfect solution.
4: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
9: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
11: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
12: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
13: डील कहाँ?
12: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
14: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है.
15: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
16: Nation ka fun station, Fun Asia Radio.
17: फन एशिया और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को. आज स्टूडियो से घड़ी में बज रहे हैं 1:33 एक और आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे शो में, जहां पर एक घंटे तक और आप मेरी सुनेंगे बातें, कुछ इधर की कुछ उधर की, कुछ बिना सर पैर की कुछ काम की, पर सुनते रहेंगे मुझे यहां से और आपकी फरमाइशें आते रहेंगी, गाने प्ले होते रहेंगे और ऐसे ही हमारे शो का सफर चलता रहेगा. फिलहाल अगले गाने की तरफ लेकर के चलूंगी, लेकिन उसके पहले एक बार तालियां बजा दो यार, जब बंदे ने सही जवाब दे दिया है. और आज के गिव अवे के विनर हैं मिस्टर अजहर, जोरदार तालियां. तो भाई अजहर को मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से एक $10 ऑफ का कूपन ऑन हिज डाइनिंग बिल ऑफ $50 और मोर. तो जाइए चंडीगढ़ बाइट्स में, खाना एंजॉय करिए और $10 का डिस्काउंट भी पाइए. अब शो को आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारे गाने हमने रख करके रखे हैं लाइनअप और आपके पसंद के गाने सुनाते रहेंगे आपको फनीशा के स्टूडियो से.

अरिजीत सिंह की आवाज़ में एक और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा गाना था ये। और ये गाना ना मुझे 3 साल पहले लेकर के जाता है जब मेरी बेटी पैदा हुई थी। पता है वो लोरी की जगह पे ये गाना सुन के सोती थी। मतलब आज भी वो मतलब उसको ये गाना बहुत पसंद है। और जब हम इंडिया ट्रिप पे थे तो इंडिया में तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं जिसमें सारे यू नो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं। तो ये वो पहला गाना था जिससे वो सोती थी व्हेन शी वाज 3 मंथ्स ओल्ड। एंड देन ना व्हेन शी ग्रू अप उसको वो लुटपुट गया वाज हर फेवरेट सॉन्ग। उसको देख करके बड़ा ऐसे बैठे बैठे वो डांस करती थी और ओ माही भी उसको बहुत पसंद था। और मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया शाहरुख खान। एक दिन हम लोग शी वॉज अराउंड लाइक 11 मंथ्स तब। एंड फिर जब हम लोग इंडिया पहुंचे तो होर्डिंग्स जो होती हैं उस पर उनको शाहरुख साहब दिखे। और भाई साहब मेरी बेटी ने बोला मम्मा शाहरुख खान। हम बोले क्या हो गया भाई, मेरा 12 महीने का 13 महीने का बच्चा शाहरुख खान बोल रहा है। ओ माय गॉड, शी इज जस्ट वो बॉलीवुड की दीवानी लाइक हर मम्मा। एंड आज भी उसको सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर का नाम पता है, शाहरुख खान, जो कि मेरा भी फेवरेट है। हाय, और शाहरुख खान को देखते ही एकदम मुस्कुरा के नाचने लगती है मेरी बेटी। तो बॉलीवुड वाली एकदम पक्की बेटी पैदा की है। भले उसका जन्म अमेरिका में हुआ, पासपोर्ट अमेरिकन हो, पर भैया बच्चा मेरा है दिल से एकदम देसी और बॉलीवुड का फैन ना। अगला गाना आप सबके लिए लेके आ रही है आपके होस्ट आयुषी।

PMJ Jewels is now in Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. Explore beautiful gold, diamond and bridal collection for every celebration. Visit PMJ Jewels on Main Street in Frisco. Jewelry that tells your story. तो भाई जाइए और जल्दी से कुछ खरीद के लेके आइए PMJ Jewels से. शो को आगे बढ़ाते हैं. अगला गाना लाइन अप करके रखा हुआ है मैंने आपकी ही फरमाइश पे. इस खूबसूरत से गाने की तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं. और अगर आपका भी बच्चा मेरी तरह, मेरे बच्चे की तरह बॉलीवुड का दीवाना है तो जल्दी से कॉल करिए और बताइए मुझे 9722355555. मेरी बेटी है शाहरुख खान की दीवानी जैसे हम थे. उसका कोई भी गाना आता है मैडम कूद कूद के डांस करने लगती है. शाहरुख का गाना ये रहा आप सबके लिए.

दैट वॉज शाहरुख खान इन हैरी, जब हैरी मेट सेजल. और अगले गाने की तरफ लेकर के चल रहे हैं, एक और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश आई है फ्रॉम द मूवी छिछोरे.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
7: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
6: आखिर आखिर क्या है इस बिरयानी में?
7: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
8: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल। ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस। नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर। डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को, 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को, टेक्सास।
5: हैप्पी आवर्स मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 3 PM टू 7 PM।
8: बिरिस्ता हाउस, रिचनेस ऑफ बिरयानी ब्लिस।
9: अजी सुनते हो?
10: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
11: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
12: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Miraj Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 AM to 5 PM Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
5: Visit Miraj Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Miraj.
13: Aaj se aap straight from the heart. Kal Hindi Hindi bol.
14: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
5: Call Navneeta Khemka at 347-449-4242.
13: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 347-449-4242।
15: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
16: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
15: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
16: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
12: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving.

0: Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic, now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: यू ऑन द राइट ट्रैक।
5: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चा, बहुत सारे गाने और बहुत सारे कॉल्स, ये है एक अच्छे शो का मतलब। और मेरे हिसाब से इनमें से ऑलमोस्ट सारे क्राइटेरियाज आज के लिए फुलफिल हो गए हैं। आपकी होस्ट आयुषी आपको उम्मीद करती हूँ अच्छे से एंटरटेन करिए कुछ प्यारे प्यारे गानों के साथ। गाड़ी में बैठते ही अगर एक अच्छा सा गाना बज जाए ना तो बस सफ़र सुहाना हो जाता है, मज़ा आ जाता है। छोटी सी ड्राइव भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा सुरीली और म्यूज़िकल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है ना। तो बस गाड़ी में बैठते ही ऐसा ही एक प्यारा सा गाना आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ। अगर आप पहले से बैठे हैं, आप बैठ रहे हैं तो 90s के इस नंबर को ड्राइव करते करते गुनगुनाइएगा ज़रूर।

मजा आया ना, गाने को गुनगुनाया ना। ऐसे ही प्यारे और खूबसूरत गाने फनेशा पर चलते रहते हैं। और मेरे बाद यहाँ पर आएंगी सुनहरी किरण, एक सुनहरा सा शो लेकर के। बड़ा ही प्यारा सेगमेंट करती हैं बच्चों के साथ, क्योंकि वक्त हो रहा है बच्चों को गाड़ियों में आने का। तो बस किरण को सुनिए, उनकी बातें सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाइए उनका प्यारा सा ये शो। फिलहाल आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को 104.9 FM पर। और यहाँ प्यारे खूबसूरत 90s के गानों का सफर चल रहा है। मतलब 90s का एक गाना आ गया था आपकी ही फरमाइश पर, बहुत ही प्यारा और मेरा फेवरेट सॉन्ग है परदेस फिल्म से। ये अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चलते हैं भैया। ये भी है हमारे प्रिय शाहरुख खान की ही फिल्म से। और उन्होंने कहा, मेरे कॉलर ने कहा कि दो दिल मिल रहे हैं सुन करके याद आ गया, यार ये भी गाना सुना दो। 2000s का नंबर है बट बहुत ही प्यारा ट्रैक है ये।

ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम कवि अलविदा ना कहना, टाइटल ट्रैक था ये सोनू निगम की आवाज में। और डैलस वालो, तैयार हो जाइए एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक के लिए, क्योंकि आप वन एंड ओनली सोनू निगम को सुन सकते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट। एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन सैटरडे सितंबर 26 एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। योर फेवरेट सॉन्ग्स दैट Iconic voice, all live. Tickets available at Ticketmaster. For more information, call 855-360-SHOWS. Revolution Sonu Nigam Live. Exclusive media partner, Fun Asia Network. तो भाई 26 सितंबर रात 8:30 PM टिकट बुक कर लीजिए और तैयार हो जाइए इस धमाकेदार सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट के लिए। तो चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं, वक्त बहुत कम है, गाने 2-3 और लाइंड अप है मेरे पास, तो जल्दी जल्दी सुना देते हैं आपको। ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी हम तुम।

हम तुम का था ये गाना, बड़ी ही मज़ेदार सी फिल्म थी और गाना भी बहुत प्यारा है। एंड अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, स्टूडियो में 2:30 बज गए हैं, मेरे जाने का वक्त हो रहा है, सुनहरी किरण के आने का टाइम हो रहा है, तो प्लीज़ उनके साथ एंजॉय करिएगा अगला सेगमेंट। अपनी होस्ट आयुषी को विदा दीजिए, उम्मीद करती हूँ मेरे साथ बिताए हुए 2 घंटे आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, कॉल करते रहिए, फरमाइशें देते रहिए और हम आपकी फरमाइशें पूरी करते रहेंगे। आज के लिए विदा दीजिए, कल फिर मिलूंगी 12:30 बजे स्टूडियो में, कुछ प्यारे खूबसूरत गाने लेकर आपके लिए आऊंगी अपनी चटपटर बातों के साथ। मेरी बातें ऐसी ही चलती रहेंगी फनेशिया के स्टूडियो से। तो आज के लिए विदा दीजिए, छोड़े जा रही हूँ इस बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने के साथ।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
4: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
5: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
4: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
5: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
3: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
6: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
7: हाँ।
6: घर रिलोकेट करनी है?
7: हाँ।
6: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
7: हाँ भाई हाँ।
6: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
8: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
16: क्या मतलब?
17: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
17: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
16: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
18: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Financial Radio. सुन रहे हैं आप Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran. मैं हूँ किरण आपके साथ. Thank you so much for connecting with us this afternoon. Ayushi, thank you for an absolutely beautiful show as always. Financial रखता है आपको entertained as well as informed 24/7, 365 days a year. हम आपके साथ रहते हैं 972-235-5555 के साथ. आप भी रहते हैं हमारे साथ. तो जी आज है वेंसडे और आफ्टरनून ड्राइव टाइम्स विद सुनहरी किरण में वेंसडेज को बहुत सारी चीजें होती हैं आपके लिए और एक आपका बहुत ही पसंदीदा सेगमेंट होता है. तो वी विल स्टार्ट विद रोमांटिक मेलोडीज, गो ऑन टू पॉप फ्रीक्वेंसी वेयर आई विल प्ले सम पॉप पाकिस्तानी सॉन्ग्स फॉर यू. देन 3:30 टिल 4 पीएम आई विल ब्रिंग यू द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. तो वो बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट है, आप सब बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेशन करते हैं उसमें. एंड देन वी विल मूव ऑन टू ट्रॉफी ट्रैक्स. लॉट्स ऑफ म्यूजिक, लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट, लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट आई विल प्ले फॉर यू. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड.

रोमांटिक मेलोडीज सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण पे. वी विल बी प्लेइंग दीज टिल 3 PM और 3 के बाद स्टार्ट करेंगे पॉप फ्रीक्वेंसी. बिफोर आई प्ले ऑन दिस नेक्स्ट ब्यूटिफुल नंबर, आपके लिए मैं बताती चलूं कि लेड बाय CPA सुधीर पाई, माई टाइम एक्विटी ऑफर करते हैं पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज रिटायरमेंट प्लानिंग. मनी, finance, managing your finances, taking care of your finances and making the right choices is extremely important ji. Aur aap sabko, everybody knows that, aapko bhi malum hai, mujhe bhi malum hai, lekin we are always looking for someone who can give us the best guidance, and that for that you have to contact My Time Equity. Their number is 469-702-1272, 469-702-1272 unka number, ya phir mytimeequity.com is where you need to log on.

उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा जी की आवाज़ों में सुन रहे थे आप ये गाना पिया बसंती एल्बम से लिया गया। रोमांटिक मेलोडीज़ में अभी दो तीन गाने और हमारे बाकी हैं तो मैं आपके लिए बैक टू बैक प्ले कर रही हूँ कम से कम बात और ज़्यादा से ज़्यादा मज़े के गाने। लेकिन आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जी सेहत की ज़रूरत तो हम सभी को होती है, हम सब अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और अगर नहीं रखते तो फिर प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। और पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए ये ज़बरदस्त बात लेके आया है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके नेटवर्क में नहीं आता तो फिर आप अफोर्डेबल प्राइमरी केयर फिर भी हासिल कर सकते हैं विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट। $85 अ मंथ की ये मेंबरशिप होगी आपकी। अगर आप इस मेंबरशिप को लेते हैं तो यू विल गेट प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत सारी सहूलियत आपको मिलेंगी इस $85 अ मंथ की मेंबरशिप पे। दिस इज पैशन हेल्थ डायरेक्ट। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं। ऑल्सो अगर आपको कोई भी सवाल है इसकी एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस पे या कि और मजीद आपको क्या क्या मिलेगा इस मेंबरशिप में तो कॉल कीजिए या टेक्स्ट कीजिए 214-666-6259 इज दैट नंबर या फिर पैशन हेल्थ physicians.com is where you need to log on। और आपको ये भी बता दूं कि उनकी जो फिजिकल लोकेशन है जी पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर की दैट इज ओपन ऑन सैटरडेज एंड संडेज टू। तो अब आपके पास कोई जवाब नहीं है अपनी सेहत का ख्याल ना रखने का।

ये गाना सुन के मुझे परवीन शाकिर साहिबा का लिखा हुआ एक गजल का शेर याद आ जाता है. कहती हैं कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी. तो ये गाना भी कुछ ऐसा ही है, हाँ कि ना, जो भी होगा मेरे ही हैं आप. तो रोमांटिक मेलोडीज के इस कड़ी का ये सिलसिले का ये कड़ी थी एक और अब एक और खूबसूरत गाना खास तौर पे सफ़ी के लिए प्ले कर रही हूँ. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जी कि अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है, कोई भी गेट टुगेदर है, कोई हाउस वार्मिंग पार्टी है, ग्रेजुएशन ऑफकोर्स अभी तो खैर टाइम नहीं है, बट कोई भी वेडिंग सेरेमनी आ रही है, वैसे सीजन शुरू हो रहा है कुछ शादी ब्याहों का, तो वैनेसा इवेंट्स brings it all together. Venue, decor by signature events aur saath hi saath photography, hospitality aur catering bhi exclusively by Pasera Grand. To all in all aapko ek complete package milta hai jab aap Vanessa Events ke saath contact karte hain, taaki aap apne function ko enjoy kijiye. Just relax, enjoy your function, be a superb host and let Vanessa Events handle everything else for you. Hari Basera sahab is the contact number information, jo ke contact person hai aapke Vanessa Events pe, jo aapko tamam information de sakte hain. So unko call kijiye 469-442-8770. Number ek baar phir note kijiye 469-442-8770. This is Vanessa Events, your celebration partner, so that you can relax and have fun at your own event.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: We need to talk.
2: अब क्या हुआ?
1: Nothing. It's not you.
2: Oh no.
1: It's the distance.
2: Distance? We live 10 minutes apart.
1: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
0: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
3: Zindagi ek safar hai suhana. यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम। 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
4: भूख लगी
5: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery।

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Pop frequency में हम enter कर गए हैं जी, यानी कि ये अगला घंटा कुछ पाकिस्तानी pop music आपके लिए play होगा. And we are going to celebrate a personality जो September के महीने में अपना birthday celebrate करती हैं. साथ ही साथ 3:30 till 4 PM I will bring you the top 10 trending dramas according to the TRP charts जो आपको अपनी list पे जरूर डालने चाहिए. Top 4-5 तो definitely, अगर मतलब आपको dramas देखने का शौक है, so these are the dramas that you must watch. So let's begin our pop frequency on Fun 104.9 FM. Thank you once again for connecting with us.

That was one of the most popular songs of Nazia Hassan. सुन रहे थे आप ताली दे थल्ले. और अब आगे बढ़ रहे हैं जी. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 4-time TEDx speakers and award-winning career coaches Shilpa and Kapil Kulshrestha are coming to Dallas for a powerful career growth workshop. इस वर्कशॉप में आपको क्या मिलेगा ये भी आपको बताती चलती हूँ कि वो क्या आपको बताएंगे ऐसा जो कि आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जी हाँ, they will talk about how to reposition your value, strengthen your leadership presence as well as accelerate your career with clarity and confidence. तो अगर आप प्रोफेशनल हैं डालस में, अपनी वर्क स्पेस में अपनी प्रोफिशंसी को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ देखना चाहते हैं कि भाई क्या चल रहा है आजकल वर्क प्लेस में, AI से क्या आगे होने वाला है, जो हम कितनी अनसर्टनिटीज रहती हैं हमें, सो डू अटेंड दिस वर्कशॉप टू फाइंड आउट मोर अबाउट हाउ टू राइटली पोजिशन योर सेल्फ. दिस वर्कशॉप इज हैपनिंग इन डालस ऑन सेप्टेम्बर द 19th, यानी कि बस 3 दिन बाद इस वीकेंड पे. रजिस्टर कीजिए आज ही playitful.com/dallas. दैट इज द वेबसाइट जहां आपको जाके अपने आप को रजिस्टर करना है. वंस अगेन इट इज playitful playitful.com/dallas. दिस इज वेयर यू गोइंग टू रजिस्टर एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर पावरफुल करियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी नाउ. तो इसी के साथ हम आज जिस पर्सनालिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने इस सेगमेंट में वो है जी मोमिना मुस्तहसन. शी वॉज बॉर्न ऑन 5th September 1992. और मोमिना की आवाज़ हम लोगों को कब सुनाई दी, 2016 में राहत फ़तेह अली खां के साथ मोमिना मुस्तहसन अपेयर हुई थी कोक स्टूडियो में और उन्होंने आवाज़ मिलाई थी एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बहुत ही मशहूर गाने जो कि नुसरत साहब की आवाज़ में था, आफरीन आफरीन के लिए. एंड दैट वॉज द डे वी सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम शी अराइव्ड एंड देन वी ऑल वर लाइक wow, this is such a beautiful voice and presence. This is Momina Mustahsin for you.

This part of our show is proudly brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax and accounting firms in the US. Offer karte hain ji aapko trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping as well as business advisory services. Agar aap individual hain, aapka koi startup hai ya aapka koi established business hai, do contact AG Fintax. They will definitely guide you in all these steps and help you become even stronger. Their call is 469-942-9888. Number again is 469-942-9888. Ya phir aap unki website visit kijiye agfintax.com. That is FINTAX, agfintax.com. Momina Mustahsin pe hum baat kar rahe the. Unki birthday abhi September 5th ko unhone celebrate ki. Ek singer hain, song writer hain, biomedical engineering and applied mathematics padh ke aayi hain. Stony Brook University se. She is a graduate with double majors. Aur pehli baar jab unko prominence mili, to that was when she performed as a co-singer and a writer for Farhan Saeed's single पी जाऊं एक गाना था और उसके लिए और फरहान सईद तो आपको मालूम है आजकल जो बस तेरा साथ हो के हीरो आपको नजर आ रहे हैं दैट इज फरहान सईद. उसके बाद उन्होंने आवारी गाना गाया इंडियन फिल्म बॉलीवुड के लिए एक विलन जो 2014 में आई थी एंड इट बिकेम क्वाइट पॉपुलर. और जो सही प्रोमिनेंस उन्हें मिली वो मिली कोक स्टूडियो के इस गाने के साथ जब उन्होंने राहत फतेह अली खान साहब के साथ मिलाई अपनी आवाज और फिर कई सारे हमें फन फिल्ड गाने दिए. एक और गाना जो उनका बहुत ही ज्यादा मशहूर है दैट is Uchiyan Diwara jo main aapke liye play kar rahi hu Momina Mustahsin and Bilal Saeed. Suhail's wishing her a very very happy birthday.

जी हाँ, मुझे इस गाने का मुझे इतना प्यारे ये लिरिक्स लगते हैं कि मेरा पहले भी दिल टूटा हुआ है, इसीलिए मैंने अपने दिल में अब कोई खिड़की नहीं बनाई, कोई आने जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा कि कोई आए और दोबारा से दिल तोड़ के जाए. लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, व्हाट एन एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल नंबर. ये आप मोमिना मुस्तहसन और बिलाल सईद की आवाज़ में सुन रहे थे. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स और यू नो इस सेगमेंट को एंजॉय करने के लिए. बस एक गाने के साथ हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं स्टार्ट करूंगी आपके लिए द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स, जो आपको मिस नहीं करने हैं, देखने हैं. एटलीस्ट टॉप 5 के तो जरूर देखने हैं. तो लेट्स मूव ऑन. एक और गाना From Cook Studio Season 9. This is one of those songs that became really popular. Once again, this is Aasim Azhar and Momina Mustahsin. This is Tera Wo Pyar. And specially, Vinay, bahut bahut shukriya aapka mujhe ye gana yaad karane ke liye. I want to specially play it for you.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: डैड प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
3: लैपटॉप में.
2: इन्वेस्टमेंट?
3: गूगल ड्राइव.
2: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
3: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
2: डैड वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
1: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम.
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल.
1: कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन. NRI वेल्थ. डोंट लीव अ मेस, लीव अ प्लान.
5: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
5: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
8: जिंदगी एक रंगमंच है
9: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
10: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
11: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
10: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
11: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
12: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
13: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
1: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
13: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
14: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
15: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो. फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
7: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
16: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
7: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
17: Dallas ki dhadkan 104.9 FM. फनीशिया रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो आफ्टरनून ड्राइव टाइम सुन रहे हैं आप सुनहरी किरण के साथ। और आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं कि पेज 3 ईटरी अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया तो बहुत ज्यादा स्पेशल आप कुछ मिस कर रहे हैं। पेज 3 ईटरी ब्रिंग्स द फ्लेवर्स ऑफ मुंबई एंड लखनऊ टू हब 121 इन मेकिनी। आप आइए एंजॉय कीजिए उनकी फ्लेवरफुल चाट्स, कबाब्स, स्मोकी तंदूरी डिशेज, बिरयानी एज वेल एज हैंड क्राफ्टेड ड्रिंक्स। मतलब आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, जिस भी किस्म का खाना आप पसंद करते हैं, आपको चाट्स खानी है या आपको फुल फ्लेज मील खाना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट पेज 3 ईटरी। विजिट फॉर डिनर, फॉर डेट नाइट्स, फॉर इवनिंग विद फ्रेंड्स, जस्ट हैविंग सम ड्रिंक्स, एनीथिंग। एक्सप्लोर कीजिए उनके मेन्यू को बाय विजिटिंग page3eatery.com। अच्छा जी, page3eatery.com के साथ अब हम आ रहे हैं हमारे ड्रामा फीवर की तरफ। जी हाँ, इट इज टाइम नाउ टू टेल यू द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स फॉर लास्ट वीक, दैट वाज September 7th टिल September 13th। तो कहानी में चीजें कुछ ऐड हो रही हैं, कुछ निकल रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको बताती जाऊंगी। जी 10वें नंबर से आगाज करते हैं अपने इस काउंटडाउन का। 10th नंबर पे जो ड्रामा रहा इस हफ्ते टीआरपी चार्ट्स पे विद 5.6 टीआरपी इस ड्रामा सीरियल लीडर। लीडर ड्रामा सीरियल एक पॉलिटिकल और रोमांटिक थ्रिलर है जो कि 28 मार्च से ये ड्रामा शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम की तरफ ऐसा लग रहा है कि अब ये पहुंच रहा है। इट हैज टेकन द सोशल मीडिया बाय स्टॉर्म फॉर इट्स यूनिक थीम एंड इंटेंस स्टोरी लाइन, स्टूडेंट पॉलिटिक्स एज वेल एज द फ्यूडल पॉलिटिक्स, और बहुत कुछ इस ड्रामे में दिखाया जाता है। 8 बजे आता है हर संडे को, और इसमें नजर आई हैं हमें किंजा हाशमी एज रुबाब एंड अली रजा एज मंसूर। सो दिस इज ट्रेंडिंग एट पोजिशन नंबर 10। और पोजिशन नंबर 9 पे जो ड्रामा है जी वो है एक बार फिर अली रजा का ड्रामा विच इज मिर्जा की हीर। मिर्जा की हीर भी अब ऐसा लग रहा है कि बस जैसे इख्तिताम की तरफ आ ही चुका है। ARY डिजिटल पे ये ड्रामा वेंसडेज और थर्सडेज को शाम 8 बजे एयर होता है, और इसमें भी अली रजा एज तैमूर मिर्जा एंड हिना आफरीदी एज हीर। अच्छा, हीर, और अभी आपको नाम से ही अंदाजा हो जाएगा मिर्जा की हीर है तो कहीं ना कहीं ट्रेजेडी तो होनी है, कोई एक विलन भी होना है बीच में, और मोहब्बत भी बहुत स्ट्रांग दिखाई जानी है, तो वही सब कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन मिर्जा की हीर में जो सबसे ज्यादा लोग जिसके बारे में बात करते हैं वो है जी विलन। विलन मतलब दिल नवाज का जो पोर्ट्रेल किया है जाहिद अहमद ने, उसको एक स्टैंड आउट एलिमेंट माना जा रहा है इस ड्रामे का। एवरीबॉडी इज सोशल मीडिया इज टॉकिंग अबाउट द मेन विलन। हीरो हीरोइन तो हैं ही, लेकिन विलन हैज एक्चुअली आउटशैडोड एवरीवन। और दिल नवाज का ये जो जाहिद अहमद हैं, ये कुबरा खान के हस्बैंड है, अभी इनकी कुछ दिनों पहले शादी भी हुई है। अच्छा जी, ये हुई आपके लिए नंबर 9 का ड्रामा। और अब नंबर 8 पे जो ड्रामा ट्रेंड कर रहा है दैट इज कॉल्ड निश्तर। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट शोज ऑन टेलीविजन आजकल, अच्छे और बुरे दोनों लिहाज से। बुरे इन अ वे के क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है इस ड्रामे की स्टोरी लाइन को, बिकॉज सम पीपल आर जस्ट नॉट एबल टू रिलेट टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ड्रामा। लेकिन कुछ लोग आर ओके विद इट, दे आर लाइक या इट्स जस्ट अ ड्रामा, जस्ट वॉच इट एंड मूव ऑन। सो August 21st से ये शुरू हुआ है ड्रामा। इसमें हमें नजर आ रहे हैं नेशन के हार्ट थ्रॉप दानिश तैमूर एस शाह दाऊद और अनमोल बलोच, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जिन्होंने ड्रामों में काम किया है, और पहली बार हमें दानिश और अनमोल की जोड़ी एक साथ देखने को मिल रही है। स्टोरी जो है वो माहा मलिक ने लिखी है, और प्लॉट जो है वो सेंटर करता है ऑफकोर्स शाह दाऊद साहब के इर्द गिर्द, जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बहुत उनकी असर रसूख है, और एक लड़की है जो कि एक सिंपल से बैकग्राउंड को बिलोंग करती है, और फिर वो चैलेंज कर देती है उन्हें, और फिर उनकी ईगो हर्ट हो जाती है भाई, और फिर क्या होता है, यही सारा ड्रामा है जो आपने देखना है। निश्तर ट्रेंडिंग एट नंबर 8 विद 5.8 TRPs। अब हम इस गाने से वापस आएंगे तो आई विल टेल यू कि बाकी के ड्रामे यानी कि 7th, 6th और 5th पोजिशन पे कौन से ड्रामे रहे। बने रहिए

ऑलराइट, ड्रामा फीवर में आपका एक बार फिर वेलकम है जी. सुन रहे हैं आप टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास अकॉर्डिंग टू द टीआरपी चार्ट्स राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. सातवें नंबर पे जो ड्रामा टीआरपी चार्ट्स पे रहा विद 7.9 नंबर इज मैं तेरा. मैं तेरा ड्रामा आता है जी ARY डिजिटल पे मंडे थ्रू फ्राइडे. 5 दिन का ये ड्रामा है, 9 बजे शाम को आता है और प्रोड्यूस्ड बाय आई ड्रीम एंटरटेनमेंट. काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ये ड्रामा. एक्चुअली पिछले एक महीने से इसकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है. टीआरपी चार्ट्स पे बहुत ज्यादा अच्छी ग्रिप बना ली है इसने, बिकॉज आई थिंक लोग अभी भी वही फैमिली डायनामिक्स और इमोशनली चार्ज स्टोरी लाइन्स को पसंद करते हैं जिसमें लड़कियां औरतों पे जुल्म होता भी है और औरतें जुल्म करती भी हैं. कुछ ऐसा ही ड्रामा मुझे दिखने में नजर आ रहा है ये. तो अरीस खान एज हसन, युसरा इरफान एज कश्माला, गाना अली और भी बहुत अच्छी कास्ट है इसकी. लेकिन यू नो टू ईच देयर ओन, मुझे ये ड्रामा थोड़ा सा ज्यादा परेशान करता है. बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी मुझे फील होती है. लेकिन अगर आपको पसंद है तो जरूर देखिए. दिस वॉज ट्रेंडिंग एट नंबर 7. उसके बाद नंबर 6 पे जो ड्रामा है दैट इज ड्रामा सीरियल तपिश. ये एक बहुत पॉपुलर हाई फास्ट पेस्ड पाकिस्तानी टेलीविजन ड्रामा है जो कि जून 1 से शुरू हुआ था एंड इट क्विकली बिकेम मैसिव डिजिटल सक्सेस, पुलिंग ओवर 500 million व्यूज ऑन यूट्यूब विद इन इट्स फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑन एयर. हर पल जियो पे ये ड्रामा आता है मंडेज एंड ट्यूजडेज को और इसमें हमें नजर आ रहे हैं मुनीब भट्ट, लाइबा खान, साद कुरैशी. और प्लॉट जो है दैट रिवॉल्व्स अराउंड एन इंटेंस ग्रिपिंग लव ट्राइंगल दैट हेविली यूटिलाइजेस द काइंड ऑफ अ साइको लवर और डार्क ऑब्सेशन. मतलब ये इस तरह की चीजें भी लोग काफी पसंद करते हैं जी. तो अगर आपने इसको देखना भी शुरू नहीं किया, पीपल आर एक्चुअली loving the drama because of the extreme plot twist. High octane family conflicts हैं, aggressive manipulation tactics हैं. मतलब अगर इस तरह के ड्रामे आपको पसंद है तो then definitely Tapish is one for you. और उसके बाद जी अब जब हम इस गाने से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी the top 5 trending dramas according to the TRP charts last week.

अच्छा जी, लास्ट वीक जो ड्रामा नंबर 2-3 पे ट्रेंड कर रहा था, आई थिंक 3rd पे ट्रेंड कर रहा था, उन एपिसोड्स को जो 15th और 16th एपिसोड्स आई थी इस ड्रामे की, द ड्रामा सीरियल इज आपकी इज्जत, उनको डेफिनेटली बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. और कुछ ऐसा ही हुआ इस हफ्ते की जो एपिसोड्स थी वो ऑडियंस के साथ बहुत ज़्यादा बहुत उस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाई. आपकी इज्जत आ गया है नंबर 5 पे फ्रॉम नंबर 3. बहुत अरसे उसने नंबर 3 पे अपनी पोजिशन बनाई. दिस इज अ ड्रामा सीरियल जो कि हम टीवी पे आता है फ्राइडेज और सैटरडेज को शाम 8 बजे, और इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग जो स्पेशली एपिसोड स्ट्रीम होती हैं ग्लोबली हम टीवी के ऑफिशियल चैनल पे, वो फौरन ही आपको अवेलेबल हो जाती हैं. और मैं देखती हूँ कि 3-4 घंटे में मिलियंस ऑफ व्यूज इस ड्रामे को मिल चुके हैं. पीपल आर जस्ट सो ईगली वेटिंग फॉर दीज एपिसोड्स, और जैसे ही रिलीज होती है मुझे लगता है कि लोग देखना शुरू कर देते हैं. उर्वा हुकैन और एहसन खान, बीना और ताबिश की कहानी जो कि एक 14 ईयर्स की मैरिज है, जो उसके बाद काफ़ी सेक्रीफाइस इन्वॉल्व हैं इस मैरिज के अंदर, स्पेशली फ्रॉम द वाइफ साइड, और उसके बाद क्या होता है और किस तरह से वो जो हस्बैंड हैं वो पानी फेर देते हैं उस सारी चीज़ के ऊपर, और फिर किस तरह बीना क्या करती हैं, मतलब कुछ कन्फ्यूजन्स अब लोगों को होती जा रही हैं कि क्यों बीना ने ये फैसला लिया. बट टू वट एवर इट इज़, द ड्रामा इज स्टिल ट्रेंडिंग. और 16वीं एपिसोड अभी भी, हालांकि 17-18 एपिसोड हो गई हैं, लेकिन बात अभी भी सब 16वीं एपिसोड की ही ज्यादा कर रहे हैं. सो जरूर चेकआउट कीजिए, दिस इज वन ऑफ दोज ड्रामास दैट यू रियली रियली डोंट वांट टू मिस. दिस इज आपकी इज्जत. और फिर चौथे नंबर पे जिस ड्रामे ने अपनी जगह बनाई और बड़े कमाल की खूबी के साथ ऊपर आया है, एंड दैट इज टूटा हुआ दिल. ARY डिजिटल पे डेली का ड्रामा है ये, इट्स नॉट लाइक एक दो दिन आता है, 7 बजे शाम डेली आता है ये ARY डिजिटल पे. और इसमें हमें नजर आ रहे हैं जी आगा अली और साथ ही साथ नाजिश जहांगीर. और ड्रामा जो है वो फॉलो करता है एक इमोशनल जर्नी ऑफ दीज टू पीपल, जो इंडिविजुअल्स हैं अपने अपने डीप स्कार्स कैरी कर रहे हैं, अपने हार्ट ब्रेक्स के साथ एक दूसरे से मिले हैं, बिट्रेल्स जिंदगी में मिल चुके हैं, और अब एक दूसरे को कैसे सॉलिस देंगे, दैट इज द होल स्टोरी ऑफ द ड्रामा. पीपल आर रियली लाइकिंग दिस ड्रामा बिकॉज they are finding it very engaging. उनको लगता है कि जो narratives show किए गए हैं, emotional healing का जो process दिखाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा intriguing है और मज़ा आ रहा है लोगों को देख के. अब यही है जी, जो इस चीज़ को लोगों को देख के मज़ा आए, that is worth seeing. अच्छा, ये हुए आपके लिए टॉप, नीचे से लेके मैं टॉप 4 तक आ चुकी हूँ. अब 1, 2 और 3 रह गए हैं. इस गाने के बाद मैं आपको बताऊँगी what are the top 3 trending dramas of last week.

शहरयार मुनव्वर और माहिरा खान पे पिक्चराइज्ड ये गाना फ्रॉम द मूवी परे हट लव आप सुन रहे थे. ऑल राइट, मूविंग बैक टू आवर ड्रामा फीवर सेगमेंट. और जी, तीसरे नंबर पे जो ड्रामा इस हफ्ते ट्रेंड किया, दैट इज एन एब्सोल्यूट ट्रीट. आप इस ड्रामे को बिल्कुल मिस नहीं करिए. अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, और अगर आपने लास्ट टू एपिसोड्स नहीं देखी तो फौरन जाके देख लीजिए. दिस ड्रामा सीरियल इज दर निजात, जो कि अभी शुरू हुआ है. अराउंड गालबन 13 एपिसोड्स आ चुकी हैं इस ड्रामे की. उमेरा अहमद का लिखा हुआ ये ड्रामा, और शहरयार मुनव्वर जो कि मेन लीड में हैं, दुरे फिशा और साथ ही साथ नमीर नवाज खान, ये तीन मेन लीड्स के हैं एक्टर्स. उसके साथ जो बाकी कास्ट है ड्रामे की, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दे रही है ड्रामे को. द स्टोरी राइटिंग, द स्टोरी टेलिंग is माइंड ब्लोइंग. जिस तरह से इस कहानी को बिल्ड किया जा रहा है, आजकल की जो जनरेशन है उनके प्रॉब्लम्स को दिखाया जा रहा है. आजकल के क्या, हर दौर में ही जी जिंदगी में चंद ही तो प्रॉब्लम्स होते हैं जो हर दौर में रिपीट हो रहे होते हैं, चाहे आपकी जनरेशन हो या आपके बच्चों की जनरेशन हो. हर बंदा एक ही तरीके के मसलों से गुजरता है, एडिंग सम अदर्स, बट जो बेसिक इंसानी मसले हैं वो बेसिक इंसानी मसले. बहुत खूबसूरती से उमेरा अहमद उस रिश्तों के ताने बाने को बुनती भी हैं, तोड़ती भी हैं, स्ट्रगल्स भी दिखाती हैं, और कनेक्शन टू ऑलमाइटी वो तो उनके हर ड्रामे की खासियत होती ही है. सो दर ए निजात इज समथिंग दैट यू रियली डोंट वांट टू मिस. और उसके साथ तीसरे नंबर पे से दूसरे नंबर पे जो ड्रामा रहा विद 13.7 टीआरपी इज ड्रामा सीरियल जंजीरें. फाइनली जंजीरें ड्रामा हो चुका है ख़त्म. मैं यही सोच रही थी कि भाई अब क्या दिखाइएगा, सब तो ख़त्म हो गए, सब मर गए, बस अब ख़त्म करो ड्रामा. तो फाइनल लास्ट एपिसोड जो थी जंजीरें की, वो कम्प्लीटली हीरो हीरोइन पे फोकस की गई. उनका जो है वो दिखाना था कि उनको क्लोजर मिल गए हैं, और उसके बाद हाउ दे कम टुगेदर, बैक टुगेदर अगेन, जुदाई होती है फिर दोबारा से मिल जाते हैं. दैट इज़ द स्टोरी ऑफ जंजीरें, दैट हैज़ रैप्ड अप. लास्ट एपिसोड आ चुकी है, और अब इस हफ्ते से नया ड्रामा जंजीरे की जगह पे शुरू हो रहा है, जिसमें गालबन सनम सईद हैं, जो मुझे याद है अगर तो. सनम सईद का ये ड्रामा, तो जब आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि टीआरपी चार्ट्स पे वो ड्रामा कैसा रहा. और नंबर वन पे जो ड्रामा ट्रेंड कर रहा है, बड़े ही मज़े की स्टोरी चल रही है. ऑल्दो मुझे लगता है कि कभी कभी ये लोग इतना स्लो कर देते हैं ड्रामे को, जो आजकल एक पिछली दो तीन एपिसोड्स पर एब्सोल्युटली स्लो, कुछ नहीं हो रहा. बट ठीक है, चले गए चाचा जी जेल में, और चाचा जी जेल में हैं और इधर वो बेटे फरार हैं, और जो भांजे हैं भतीजे हैं वो सलूशन ढूंढने की कोशिश करें. बस यही सब चीजें चल रही हैं, जो कि चीजें मुझे लगता है एक एपिसोड में रैप हो सकती हैं. वो कभी कभी तीन चार एपिसोड्स तक स्पैन हो जाती हैं, विच इज वाई चीजें जो है वो कभी कभी बोरिंग लगने लगती हैं. बट नेवरदलेस ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो, जो कि नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है इस हफ्ते विद 14.2 टीआरपीज. तो अगर आपने ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो नहीं देखना शुरू किया तो जरूर इसे चेकआउट कीजिए. इसमें हमें नजर आ रहे हैं फरहान Saeed as Anas and Sana Javed as Ansa. A beautiful and a brilliant story of broken family, a kind of broken family ही आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए एक बच्चा जो बिल्कुल जिसको ब्रेक कर दिया जाता है फैमिली की तरफ से, और उसके बाद उसकी रीबिल्डिंग में कितना टाइम लगेगा. इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट. वेदर वाज ड्रामा फीवर फॉर यू एट द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज ऑफ लास्ट वीक. और यही चार्ट आपके लिए हर हफ्ते रिपीट करती हूँ एवरी वेंसडे 3:30 PM टिल 4 PM. अगर आप बताना चाहते हैं मुझे कि आप कौन सा ड्रामा देख रहे हैं, तो 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

0: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
1: कितने आदमी थे?
2: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

ट्रॉफी ट्रैक्स आपके लिए लेकर आई हूँ दिस वन आवर. 4 बजे से 5 बजे तक हम पर करेंगे कुछ अवार्ड विनिंग फिल्मों के अवार्ड विनिंग गाने सुनेंगे, मैं आपके लिए प्रेजेंट करूंगी. और जी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जो कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से लिया गया था. तो ये जो अवार्ड्स का सेगमेंट होता है आप कह लीजिए या अवार्ड की बातें होती हैं, ये बहुत स्पेशल होती हैं. हम सब इनको बहुत इंजॉय करते हैं कि जी अवार्ड नाइट आ रही है, किसको क्या मिला. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर यू नो मूविंग गोइंग एक्सपीरियंस. मुझे ऐसा लगता है कि अवार्ड नाइट और स्पेशली जो चंद एक बहुत मेजर अवार्ड्स हैं जो कि बॉलीवुड में मिलते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको जरूर बताऊंगी. रेड कार्पेट एंड डिजाइनर आउटफिट्स एंड सेलिब्रिटी परफॉर्मेंसेज और साथ ही साथ इमोशनल एक्सेप्टेंस स्पीचेस इज वॉट अवार्ड सेरेमनीज आर ऑल अबाउट. सो दिस इज ट्रॉफी ट्रैक फॉर यू. अगला गाना आपके लिए लगा रही हूँ एक और अवार्ड विनिंग फिल्म से, लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूँ जी कि अगर अनफॉर्चुनेटली आप किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गए हैं या फिर कोई स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट है तो अटर्नी उमर ख्वाजा इज हु यू नीड टू कॉन्टैक्ट. कोई भी आपका जो है केस अगर आप फाइल करना चाहते हैं, जैसे कि पेपर वर्क, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना, लीगैलिटीज ऑफ द सिचुएशन, ये तमाम चीज़ें कई बार हम लोगों को एज पीपल समझ ही नहीं आती, नॉर्मल पीपल. तो आप प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अटर्नी उमर ख्वाजा को ख्याल रखने दीजिए बाकी तमाम चीजों का. हिज टीम विल हेल्प यू फाइट द केस, गेट यू द बेस्ट कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. और जो बेहतरीन बात है वो ये कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप ये केस जीत नहीं जाते. सो ऑल इन ऑल इट इज एन एब्सोल्यूट विन-विन सिचुएशन फॉर यू इन दिस स्ट्रेसफुल टाइम. गिव अटर्नी उमर ख्वाजा कॉल फॉर अ कंसल्टेशन 4693005046 is that number. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज अटर्नी उमर omar.com.

टाइम आ चला है आपके लिए एक गिव अवे लाने का. अच्छा जी, ये बड़ा मज़े का आपके लिए मैं गिव अवे लेके आई हूँ, क्योंकि इससे आपके घर की सफाई होने वाली है, आपकी माहौल की सफाई होने वाली है. अगर आपको डक्ट क्लीनिंग करानी है तो मैं आपको बताऊं कि डक्ट टाइम इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड कंपनी और एक साल इनका पूरा हो चुका है. फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं डालस में. ब्रिलियंट रिव्यूज़ हैं इनके. फ्रॉम प्रोफेशनल डक्ट क्लीनिंग अगर आप करवाना चाहते हैं टू रिमूव डस्ट एज वेल एज क्लियर क्लॉग्ड वेंट्स, या फिर इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने घर का एयर फ्लो, रिड्यूस करना चाहते हैं हिडन फायर हैजर्ड्स, तो फिर डक्ट टाइम को आपने कॉल करना है और उनको ट्रस्ट करना है, बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू गेट रिड ऑफ ऑल दीज अननेसेसरी थिंग्स जो हमारे डक्ट्स में होती हैं, जो बाद में हमारी ही अपनी सेहत को के लिए नासाज साबित होती हैं. सबसे पहले तो मैं आपको नंबर दे दूं उनका कि आप उनसे कैसे कांटेक्ट करेंगे. जीतू पटेल कांटेक्ट पॉइंट हैं जी. उनका नंबर नोट कर लीजिए, 972-877-2500. वंस अगेन द नंबर इज 972-877-2500. जीतू पटेल इज हु यू नीड टू कांटेक्ट इन डक्ट टाइम, और अपनी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं फॉर सेफर क्लीनर एंड फ्रेशर होम. अच्छा, ये तो हुई है बात, और अब आपके लिए डक्ट टाइम वाले जो हैं वो एक जबरदस्त गिव अवे लेकर आए हैं. यू कैन विन अ 50% ऑफ ऑन डक्ट क्लीनिंग फ्रॉम डक्ट टाइम. और ये करने के लिए आपको क्या करना होगा जी, डक्ट टाइम का ये एक छोटा सा सवाल है, बात करेंगे हम, आपको उसका जवाब देना होगा. अच्छा, हम बात कर रहे हैं फिल्म फेयर नहीं, अवार्ड्स की ट्रॉफी ट्रैक्स के सेगमेंट में हम मौजूद हैं. तो मुझे कॉल करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी अवार्ड नाइट कौन सी लगती है बॉलीवुड की. इज इट फिल्म फेयर, इज इट नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इज इट आईफा, इज इट जी सिने अवार्ड, या फिर जो भी मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड्स हैं, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उस अवार्ड फंक्शन का मुझे नाम बताइए. 972-235-5555. वो कौन सा अवार्ड फंक्शन है जिसका करते हैं आप इंतजार और इंजॉय करते हैं उस शो को देखने के लिए.

0: और जी कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है. अब कोई फोन कॉल मैं कॉन्टेस्ट के लिए नहीं रिसीव करूंगी. अबाउट 5 to 6 कॉल्स हमने ली और जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं उसी सीक्वेंस में मैं आपका नंबर मैथ के फॉर्मूले में डालती हूं और लकी विनर उसी तरीके से अनाउंस किया जाता है. जी मैं नहीं पिक करती विनर, आपकी लक आपकी विन को डिसाइड करती है. और आज की जो सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा बताती चलूं, डक टाइम की तरफ से 50% ऑफ ऑन डक्ट क्लीनिंग लेकर आई थी आपके लिए. और आपको सिर्फ ये बताना था मुझे कि आपका कौन सा पसंदीदा अवार्ड शो है. मुझे दो तीन जो नाम रिपीट हुए, तीन लोगों ने कहा फिल्म फेयर और तीन लोगों ने कहा आईफा. सो हमें पता लग गया कि आईफा और फिल्म फेयर इज व्हाट पीपल रियली लाइक एंड एंजॉय. और थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. और आज की जो हमारी लकी विनर हैं वो हैं कॉलर नंबर 2 विच इज शाइस्ता सलीम. सो कॉलर शाइस्ता कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. आपका नाम और नंबर हमने नोट कर लिया है. प्लीज लुक आउट फॉर एन ईमेल और समथिंग समबडी विल गेट इन टच विद यू अकॉर्डिंग टू दैट. सो वंस अगेन आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे पास अभी एक और गिव अवे है आपके लिए, वो मैं लाऊंगी ब्रेक के उस पार, बने रहिए मेरे साथ. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि आप टाइम निकालते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
4: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
5: Tarikh par tarikh.
6: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
4: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: We need to talk.
11: अब क्या हुआ?
10: Nothing. It's not you.
11: Oh no.
10: It's the distance.
11: Distance? We live 10 minutes apart.
10: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
6: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
12: Shaadi biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
14: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
15: In one moment, an accident can change everything.
5: When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
15: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पास या एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पास या बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.

और इसी के साथ आया है आपके लिए एक बड़ा अनोखा और नया गिव अवे लेकर आई हूँ, और वो आ रहा है जी बरिस्ता की तरफ से। जी हाँ, फ्रिस्को, आप तैयार हो जाइए इस रॉयल फीस्ट के। फ्रिस्को ही क्यों भाई, डालस के तमाम लोग तैयार हो जाइए इस रॉयल फीस्ट के लिए। पॉपुलर बरिस्ता हाउस फ्रॉम डेंटन इज नाउ ओपन इन फ्रिस्को, ब्रॉट यू बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल। तो आप एंजॉय करिएगा यहाँ पे, क्या उनका मेन्यू चेकआउट कीजिए, हैदराबादी बिरयानी, नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलिशियस डिजर्ट्स और भी बहुत कुछ। अपने दोस्तों के साथ आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए, अपने लव्ड वंस के साथ आइए और एंजॉय कीजिए यहाँ पे एक ऐसी फीस्ट which you will remember for a long time. They are prismbarandgrill.com/barista aap jo hai wahan ya barista pe aap likhiyega jab google pe to aapko definitely mil jayega. Ab main aapse jo ye giveaway batane wali hu ye hai $20 ka gift coupon for dine in only. To aap ye jeet jayenge to aapko $20 off milenge aapke bill pe jab aap jaiyega wahan pe khana khane. To aapko mujhe ye batana hai ki barista jo ki frisco mein located hai uska address kya hai. Jaiyega to jaane ke liye address to dalna padega, to abhi search kar lijiye agar aapke liye aasani ho jayegi. Mujhe call karke bataiye what is the address of barista house jo ki khul raha hai, brought to you by prism bar and grill. 972-235-5555 is the number to the studio.

बरिस्ता हाउस फ्रॉम डेंटन जो कि वहाँ मौजूद थे. आप फ्रिस्को में लोकेटेड हैं बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल और उन्हीं का एड्रेस मैंने आपसे पूछा था कि बताइए फ्रिस्को का क्या एड्रेस है. अगर आप जीतना चाहते हैं ये $20 का कूपन फॉर योर डाइन इन ओनली और जवाब आप सबने बिल्कुल ठीक दिया. लेट मी गिव यू द राइट आंसर फर्स्ट. दे आर लोकेटेड एट 6377 कस्टर रोड फ्रिस्को टेक्सस 75035 उनका जिप कोड है जी. सो एड्रेस अपना डाल लीजिए. आप जीते या ना जीते आपने पार्टिसिपेट किया हो या ना किया हो ये एड्रेस वो है जहां आपको जाके जरूर ट्राई करना है इनके अमेजिंग एंड डिलीशियस फूड. अच्छा जी आज की हमारी लकी विनर है कॉलर नंबर 4 विच इज शर्मिन हिरानी. सो शर्मिन कॉन्ग्रेचुलेशंस जीत लिया है आपने ये गिव अवे. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 डेज टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर $20 कूपन ऑन योर डाइन इन बिल ओनली. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एज ऑलवेज दिल से शुक्रिया.

सितंबर द 16th वेंसडे 4:54 PM इन द स्टूडियो और सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है जी 99 डिग्रीज. हाउएवर इट फील्स लाइक 107 राइट नाउ. तो जी दिन रहा सनी, हीट इंडेक्स गया अब तक अराउंड 107 टू 108 और आज की शाम रहेगी मोस्टली क्लियर विद लोज इन द अपर 70s एज वेल. आज का पॉलन काउंट इज 11.4 विच इज ऑफ कोर्स क्वाइट हाई. प्लीज मेक श्योर यू हैव योर रेमेडीज ऑन. यूवी इंडेक्स आज का है 8 विच इज हाई अगेन. कीप योर सनस्क्रीन्स हैंडी, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सनराइज आज का हुआ 7:10 पे, आज का सनसेट होगा 7:31 PM. और इसी के साथ करेंसी अपडेट देते हुए आपसे बस विदा लेने का समय आ गया है जी. अकॉर्डिंग टू xrates.com, US डॉलर आज कहां स्टैंड कर रहा है. यूरो इज ट्रेडिंग एट 0.87, ब्रिटिश पाउंड 0.74, इंडियन रुपी 96.05 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी रुपी 277.28 पाकिस्तानी रुपीज अ ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. नेपालीज रुपी 153.75, जबकि बांग्लादेशी टका 123.09 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट. राइट नाउ अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस .org, $4,263.90 इज द प्राइस ऑफ गोल्ड प्राइस पर गोल्ड पर आउंस, जबकि 1 ग्राम सोने की कीमत है इस वक्त $137.09. कल की निस्बत गोल्ड प्राइस 1 ग्राम सोने की कीमत में 93 सेंट्स की कमी हुई, जबकि 1 आउंस सोने की कीमत में $29.02 की कमी देखने को मिली. बट दैट्स वेरी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

0: I will see you tomorrow. Once again, same place, same time, 2:30 से 5 बजे तक आपके साथ मौजूद रहूंगी. कल है थर्सडे और नॉट द फर्स्ट थर्सडे ऑफ कोर्स. सो कल लेके आऊंगी आपके लिए वो 90s का बॉलीवुड, कुछ अमेजिंग 90s के गाने, 90s की यादें, 90s के बैंकेबल स्टार्स और बैंकेबल सिंगर्स, एवरीथिंग एंड मोर राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. एक कोलिजन है जी, 35 ईस्ट पे टुवर्ड्स मार्केट सेंटर बुलेवार्ड नॉर्थ बाउंड. 3 lanes आर ब्लॉक्ड, प्लीज बी केयरफुल इफ यू आर गोइंग देयर. अनदर वन इज एट IH30 टुवर्ड्स बेकली एवेन्यू ईस्ट बाउंड. 3 lanes are blocked as well. You might see a lot of backup. Take care. Drive safe.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.

0: law offices of Omar Khwaja. In association with Passion Health Primary Care.
1: Foundation 104.9 FM. Turn up the volume!
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texas फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, here everything is better.
7: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
8: हाँ.
7: घर रिलोकेट करनी है?
8: हाँ.
7: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
8: हाँ भाई हाँ.
7: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
9: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
10: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kar.
11: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
10: सच में? सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
13: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
14: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
13: नहीं.
14: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
13: नहीं.
14: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
13: वो भी नहीं.
14: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
12: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
19: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी.
20: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
19: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
20: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
21: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस. नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर. डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
12: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
21: Barista House, richness of biryani bliss.
22: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including

0: DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Matro Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
0: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
0: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है।

If you feel like you're losing everything, remember, trees lose their leaves every year and they stand tall and wait for better days to come. A big shout out to Kiran ji for a lovely show that she puts up. This is your evening drive time show. The name is The Bindaas Show, brought to you by your very own Banda Bindaas, Marindaas, Monday to Thursday, 5 to 7 p.m. And mera saath rehta hai ji, aapke saath. And what a true saying, na? वैसे हम लोग जिंदगी में इतनी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस हो जाते हैं यार, कि ये काम ठीक नहीं हुआ, वो काम ठीक नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, बनते बनते काम रुक जाएगा. इट इज़ ऑल राइट मैन. रिमेंबर, जैसे पेड़ है, उनको पतझड़ आना है और फिर बाहर आती है. ये दस्तूर है नेचर का, एंड दैट्स द दस्तूर यू गॉट टू बिलीव इन. लेट्स स्टार्ट द शो ऑफ विद अ लवली ट्रैक लाइंड अप फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई एम श्योर दैट यू गॉना जस्ट लव दिस वन. लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी. स्टूडियो का नंबर 972-235-5555. बर्थडेज, एनिवर्सरीज, वील सेलिब्रेट देम ऑल.

Take your sweetheart to Hoko this time. A brand new location aa chuki hai ji. Brand new concept and it's a chain that you've seen in India. One of India's most loved food brands jiska naam Hoko hai ji. आ चुका है फ्रिस्को में. आप वहाँ जाइए और उनकी स्पेशल आइटम्स कुछ हैं वो मैं बता रहा हूँ. मुँह में पानी आए तो गर्मी बहुत है, घूंट भर लेना, पानी की बोतल की जरूरत नहीं पड़ेगी. चना पूरी अवेलेबल है जी, सैंडविचेस, करीज एंड देयर लेगेसी लेजेंडरी कोल्ड कोको. और अगर कोल्ड कोको पसंद आई तो सिद्धू पाजी की तरह ताली ठोको. स्टूडेंट्स गेट 20% ऑफ विद देयर वैलिड आईडी एंड एम्प्लॉयज गेट 20% ऑफ लंच मंडे थ्रू फ्राइडे. जी हाँ, 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको लंच पे मंडे थ्रू फ्राइडे. एंड इफ यू आर स्टूडेंट आपको 20% परमानेंटली मिलेगा जी डिस्काउंट. एंड दिस इज ऑन 2693 प्रेस्टन रोड स्वीट 1000 और चेक द मेन्यू एट hoco.us hocco.us. टेकिंग यू टू वन मोर ट्रैक. इसके बाद छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. कहीं जाने का नहीं है भाई, अब भी आ रहा हूँ वापस. बड़ी खास बातें बतानी है आपको.

0: तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: अरे यार, घर मिल गया।
4: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
1: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
4: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
1: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
5: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
6: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
5: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
6: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
7: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
8: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
9: होचो
10: होको
9: होचो
10: होको
9: होचो
10: इट्स होको। अरे बस भी करो यार।
11: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
10: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है, एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
1: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
12: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
13: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

दुनिया बड़ी अजीब सी हो गई यार, मतलब किसी पे ना विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया। देखो कल मैं पिक्चर देख रहा था घर पे, पिक्चर देखते देखते मैं पानी पीने गया, वापस आया तो देखा गुंडे हीरोइन को उठाकर ले गए।

हद हो गई ना जमाने की बाइकॉट आजकल किसी पे। मैंने तो छोड़ दिया, आई डोंट लाइक विश्वासिंग एनीबॉडी। आई लाइक द फिल्म विश्वात्मा, उसके बाद विश्वास के बाद छोड़ ही दो। मतलब ऐसा भी होता है फिल्मों में, तो ये भी दिखाया जाता है कि हीरोइन लिखती है चिट्ठी हीरो को, ठीक है, हीरो पढ़ता है, तो हीरोइन की आवाज़ कैसे सुनाई देती है? ये भी एक AI भी नहीं समझ पाया आज तक, कंप्यूटर क्रैश हो गए। बंदा ये बिंदास है। 5:25 स्टूडियो की घड़ी में, आई एम गोना बी विद यू टिल 7 o'clock दिस इवनिंग। सितंबर की 16 तारीख हो चुकी है जी, टुडे इज वेंसडे, वी आर इन द मिडल ऑफ द वीक। हाँ, आ रहा है, हमें भी इंतजार उसी का है। फ्राइडे से दो दिन आगे जुड़ते हैं तो उनका सबको इंतजार रहता है यार, मेरा भी ये इंतजार बरकरार है। याद रखिएगा, घर लेना है तो नवनीता खेमखा का नाम आप याद रखेंगे, आपका सारा स्ट्रेस ले जाती हैं वो और आपको दिलवाती हैं इजी प्रोसेस के साथ आपका ड्रीम होम, एंड दैट इज विद नवनीता खेमखा विद केलर विलियम रियल्टी। मार्केट नॉलेज है, क्रिएटिव मार्केटिंग है, पर्सनलाइज गाइडेंस देती हैं एंड मेक्स योर रियल एस्टेट जर्नी स्मूथ। एवरी होम हैज अ स्टोरी, और उनके साथ अपनी कहानी आप लिखिए। 347-449-4242 इज दैट नंबर फॉर यू टेकिंग यू। चलो कुछ हो जाए, ये लो।

0: अगर आपके मन में भी ये खलबली चल रही है यार कि देखो अभी तो मैं जॉब करता हूँ और जॉब करते करते तो मेरे पास पैसे हैं, अब मैं कल को रिटायर होऊंगा तो मेरे पास पैसे की इनकम कैसे आएगी, मेरे पास कोई बिजनेस भी नहीं है, और फिर आप ये सोचते हो कि चलो वो बात तो बात की है, पहले ये भी एक घबराहट है मुझे कि यार जो मेरे पास बचा पूंजी जमा पूंजी है, घर हैं, गाड़ियाँ हैं, एसेट्स हैं, इनको अगर मुझे कुछ हो गया, क्योंकि हम सोचने से डरते हैं बट सोचना तो पड़ेगा ना यार, क्योंकि एक ना एक दिन तो कटनी है पतंग, तो उससे पहले की जो तैयारी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब वो पतंग कटे, विच इज़ आप शायद कहेंगे कि यार ये कैसी बात बोलता है मारिन, पतंग कटे, ऐसा ही है भाई, ज़िंदगी ऐसी ही है, सच्चाई यही है कि आज कोई है तो कल वो नहीं हो सकता, एंड दैट इज़ द फैक्ट दैट वी हैव टू फेस, एंड वंस वी फेस दैट फैक्ट वी गॉट अ प्लान राइटली, ताकि आपके जाने के बाद लोगों को आराम मिले, परेशानी नहीं. एंड टू गेट दैट प्रोसेस गोइंग आई हैव एन एक्सेलेंट पर्सन जिनका नाम है दीप्ति वर्मा, शी इज़ विद NRI वेल्थ, और वेबसाइट इज NRIWealth.com, दैट्स NRIWealth.com, एंड हर फोन नंबर इज 6692435799. लेट्स आस्क हर सम मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द वर्ल्ड ऑफ ट्रस्ट, विल्स एंड इस्टेट प्लानिंग और योर एसेट मैनेजमेंट. अ वेरी गुड इवनिंग दीप्ति, हाउ आर यू?
1: Good evening, Marvin. Thank you so much, and good evening to all my listeners.
0: Deepthi ji, if I'm on a speakerphone, that would help if you can take me off because that's creating an echo for our listeners. So if you can take me off your Bluetooth or on a speakerphone, that would help. All right. The questions that I have for you, Deepthi ji, today is, of course, every day we talk about a different question, we talk about a different topic, so our listeners can grab as much knowledge as they can from this session. Now, ye bataiye ki ये जो प्रोबेट एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है आपकी एसेट मैनेजमेंट में, व्हाट एक्चुअली इज प्रोबेट एंड व्हाई डू यू थिंक पीपल हु आर डूइंग एस्टेट प्लानिंग और विल्स एंड ट्रस्ट, व्हाई शुड दे अवॉइड दिस?
1: ग्रेट, अ ग्रेट क्वेश्चन मार्विन. आई होप एवरीबॉडी कैन लिसन टू मी यू नो विदाउट एनी इंटरप्शंस. सो द Let me answer it in a different way. So when you skip a jump, you know, or when you jump a red light, or you when you make any, road safety violation, then you are caught by a cop. The cops come after you and they give you a ticket. So similarly, in the U.S., if you do not have a living trust, which means that you've not passed on your assets in a structured way to your to the next of kin, then the probate court comes into action, which means that all the assets that you have owned in your lifetime in the United States will be seized by the probate court. So that is what the functionality of a probate court is. And what happens to your second question is that once the assets are seized, it takes anywhere between 3 and 5 years for the court to release those assets to your beneficiaries. The probate fees of 6% shall be deducted from the asset value, and it will be the probate court's discretion what they want to transfer to which beneficiary based on their income, their age, their economic status, etc. So that is what the answer to both your questions are.
0: Wonderful. And further down, I have another question. Ke jo living trust hai, is this only for select few with multiple assets, or is it for everybody that wants to do it?
1: Great question again. So yes, living trust is actually, you know, required for anybody who has any asset in the United States, because this is the only medium through which you can 100% pass on those assets to your beneficiaries without any delay, without any stress, without any deduction. So this is the only medium. So no, you need not be wealthy or you need not be multi-asset rich in order to have a living trust. Anything that you own, even a single bank account, you need to have a living trust.
0: All right, wonderful. Number once again for Deepthi, where you can reach out to her, is 669-243-5799. That's 669-243-5799. Her website is NRIWealth.com, and you can get all the information that you are looking for, anything to do with financial planning, up your wealth management or your asset management. Deepthi Verma is the person. I appreciate you, Deepthi. Thank you very much for joining with us. Always a pleasure having you. All right, taking you to Diljit Paji, Naya Gana. Wembley ch chakte ji phatte, he did a sold out show, 96,000 people, and there the roar was actual live. पंजाबी आ गया।

Diljit Paji with that track, and what a lovely show he put up in London. I am sure Londoners loved it, and मेरे को experience करना है यार दिलजीत पाजी का एक live show. कभी ना कभी ये दुआ भी हमारी कबूल करेगा वो ऊपर वाला. एक break की तरफ जा रहा हूँ जी, उसके बाद आ रहा हूँ वापस with a lot more going on for you only on Fun Asia.

0: हेलो टेक्सास परिवार, वेयर डू यू गो व्हेन बैंक सेज नो? आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड आर यू स्ट्रगलिंग विद योर क्वालिफिकेशन? यस, वी हैव लोन ऑप्शंस फॉर यू, सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. एंड 926-641.
1: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
2: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
1: कैसे?
2: पेज 3 ईटरी?
1: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
2: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
1: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
3: पेज 3 ईटरी. ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
2: जिंदगी एक रंगमंच है
3: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

धुरंधर वॉज द मूवी दैट ब्रॉट दिस ट्रैक आउट एंड वॉट अ मूवी यार. मतलब गानों की जो टाइमिंग इन्होंने डाली है ना मूवी में, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट के इतनी अच्छी प्लेसमेंट गानों की और किसी फिल्म में मैंने शायद नहीं देखी. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय हिमालयन बाजार, ग्रैंड प्रेरी, आर्लिंगटन, मैंसफील्ड के लोगों के लिए एक सुख वाली खबर है जी कि आपको अब दूर नहीं जाना पड़ेगा. दिस ग्रोसरी स्टोर इज सर्विंग ऑल ऑफ यू, बी दैट ग्रैंड प्रेरी, बी दैट आर्लिंगटन, बी दैट मैंसफील्ड. दे आर लोकेटेड ऑन 5103 मैग्ना खाटा बुलेवार्ड. दिस इज राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे 20 एंड हाईवे 360. और अगर आप 5 माइल के रेडियस में रहते हैं, विद इन 5 माइल के रेडियस में अगर आप रहते हैं, तो लगान तो क्या डिलीवरी का फीस भी नहीं लगेगा. ऑलराइट, सो जस्ट चेक कि आपका घर उनसे कितनी दूर है. टाइप इट इन योर मैप्स एंड सी हाउ फार इज हिमालयन बाजार फ्रॉम यू एंड यू विल बी एबल टू गेट योर ग्रोसरीज डिलीवर्ड विद इन 5 माइल्स फॉर एब्सोल्युटली नो डिलीवरी फी विद ऑर्डर्स ऑफ $50 और मोर. सारी साउथ एशियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, प्रीमियम हलाल मीट्स, हॉट स्नैक्स एंड एवरीडे एसेंशियल्स, सब कुछ आपको वहीं मिलेगा. चाय, कॉफी, पकौड़े और जल्द ही वहां पे पैटीज भी आपको इंजॉय करने को मिलेंगी. सो गो चेक दम आउट. एंड फॉर माय नेपलीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द वाटर बफ इज ऑल्सो अवेलेबल. चेक आउट हिमालयन बाजार, ग्रैंड प्रेरी.

अगर अभी भी ख्याल ही कर रहे हो कि जाना है यार सोनू निगम का शो देखना है यार, तो क्यों ख्याल रख रहे हो, जाइए टिकटें ले लीजिए अपनी, दिस इज गोना बी अ सोल्ड आउट शो, गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक एंड दैट इज सो ट्रू। मुझे लगता है कि जब से मैंने सोनू निगम साहब को देखना शुरू किया है, आई वाज अ चाइल्ड एंड द फर्स्ट मेमोरी दैट आई रिमेंबर ऑफ हिम इज द हीरो होंडा सारेगामापा, तो उसमें एज अ एंकर थे, एज अ होस्ट थे, एंड वहाँ से जब इनका सिंगिंग का करियर, मतलब ज़्यादा अच्छे गाने बॉलीवुड के अगर आप जाएंगे पिछले 20 साल 30 साल, यू विल सी सोनू निगम हैज़ अ लॉट ऑफ फैंटास्टिक सॉन्ग्स दैट यू ऑल लव। द वन एंड द ओनली सोनू निगम इज कमिंग लाइव टू यू राइट हियर इन DFW। रेवोल्यूशन है जी शो का नाम, सैटरडे सितंबर 26th। दैट मींस कि आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। Do you realize that? आज 16 तारीख हो चुकी है, September 26th को ये शो है, and this is at 8:30 PM at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Your favorite songs, that iconic voice, सब कुछ live मिलेगा जी. Tickets available at Ticketmaster. More information, call 855-360-SHOWS. That's 855-360-SHOWS. या जाइए Ticketmaster पे अपनी tickets फटाफट ले लीजिए. And I'm telling you, you will not be disappointed. This is one show that will stay with you for a very long time to come. Today marks the birthday of this wonderful singer from the mainstream media. Who is he? Here we go.

0: That is Mr. Mark Anthony celebrating his birthday today, which happens to be 16th of September. He was born in 1968 in New York City, New York. Grammy Award winning Puerto Rican singer, jinka top selling salsa artist history mein naam hai ji. And he's also known for hits like Vivir Mi Vida, I Need to Know, and many others. He's, as an actor, appeared in movies such as Man on Fire, Carlito's Way, and Bringing Out the Dead. He was, I believe, married to Jennifer Lopez back in the day. And today marks his birthday. A very happy birthday to him. Let's see who we have with us this evening. Good evening, Fanasia. Who's this?
1: Hi, this is Vidya.
0: Hi, Vidya. How are you?
1: I'm good. How are you?
0: God is good. Life is beautiful. Vidya ji, ye bataiye ki aaj main aapke liye kya kar sakta hoon?
1: I thought you had a question.
0: अरे नहीं, अभी तो मैंने सवाल पूछा नहीं है, पर आऊंगा सवाल की तरफ. वैसे पूछ लेता हूँ, वैसे पूछ लेता हूँ आपसे सवाल कि कहीं से आ रही हैं कि कहीं जा रही हैं?
1: मैं जा रही हूँ घर वापस.
0: घर वापस जा रही? कहाँ से? ऑफिस, जॉब? ऑफिस से घर जा रही?
1: जी.
0: कितने लंबी शिफ्ट होती है आपकी?
1: 8 hours.
0: 8 hours, माई गॉड. और आपके बच्चे भी हैं, I'm assuming, हैं?
1: हाँ,
0: तो मतलब सुबह आपकी, तो मतलब सुबह आपकी रूटीन 6 बजे के आसपास शुरू होती है?
1: जी.
0: 6 बजे उठ के आपने पहले बच्चों का खाना वाना सेट किया, जो भी करना था किया, उनको तैयार किया, हस्बैंड के लिए जो चाय कॉफी चाहिए वो करी, फिर अपने आप को फोकस किया, खुद तैयार हुई. उस दौरान ऑफिस पहुंचते पहुंचते 2-4 कॉलें की, माँ बाप को भी चेक किया, घर में बैक होम ठीक है नहीं ठीक है, रिश्तेदारों को देख लिया, फिर ऑफिस गई, बॉस की चिक चिक पिक पिक टिक टिक सब सुनी, उसके बाद अब घर जा रही हो. एक जाते जाते मेरे को फेवर करो ना, अपने आप को एक रियर व्यू मिरर देखो ना जरा.
1: ओके.
0: देखो, अभी भी देखो आपके ऊपर कितना ग्लो है. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू डू लेडीज थ्रू आउट द डे. इतना मतलब आप लोग एफर्ट डालते हो हमारी लाइफ में टू मेक मेंस लाइफ बेटर, क्योंकि मैं इसमें मेरे को कोई शर्म नहीं है. अगर आप लोग ना हो तो बाई गॉड हमारा क्या हो वो हम खुद नहीं जानते. सो थैंक यू वेरी मच. इवन आफ्टर सच अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क यू आर लुकिंग जस्ट लाइक अ वाओ. सो थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डू एंड आई होप आई पुट अ स्माइल ऑन योर फेस. हैव अ ग्रेट इवनिंग.
1: यू डिड.

और जब बज जाए शाम के 5 तो रेडियो की आवाज थोड़ी सी और खोलो। 5 to 7 रहता हूँ जी मैं आपके साथ विद दिस शो जिसका नाम है जी द बिंदास शो, और आप भी बोलो बिंदास बोलो। 7 बजे तक रहूंगा जी आपके साथ साथ, कुछ गाने मेरी चॉइस के, कुछ आपकी चॉइस के, बस बातें आपकी बातें मेरी, इसी को बुन के हम बना लेंगे जी एक बढ़िया सा स्वेटर जिसको हम आज और रोज पहना करेंगे मंडे टू थर्सडे 5 to 7 PM। लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट ट्रैक। उससे पहले आपको ये बता दूं जनाब कि एक फिल्म आने वाली है जो कि बड़े दिनों बाद देखने को मिलेंगे हमें, कौन वो मिलेंगे, आयुष्मान खुराना और साथ में है जी सारा अली खान। द मूवीज नेम इज कॉल्ड उड़ता तीर एंड दिस हैज बीन ट्रेलर रिलीज हो चुका है, 3 मिनट 21 सेकंड का ट्रेलर है एंड इफ यू वांट टू गो चेक इट आउट डू चेक दैट वन आउट। फॉर नाउ इट इज वन मोर ट्रैक एंड दिस इज अ डिफरेंट नंबर। बीबी किंग, इफ यू रिमेंबर द गिटारिस्ट वॉज बॉर्न ऑन टुडेज डेट, समवन हु इज अ लेजेंड व्हेन इट कम्स टू द अमेरिकन म्यूजिक सीन एंड आई विल प्ले अ ट्रैक फ्रॉम हिम।

रंगीला वॉज द मूवी, अ मूवी दैट आई ऑलवेज लव वॉचिंग. जैकी श्रॉफ, आशा भोसले साहब जी की आवाज, साथ में उर्मिला मातोंडकर का डांस एंड एक्टिंग एंड आमिर खान का मसाला. जबरदस्त फिल्म थी यार. दिस इज रंगीला, 90s की ऐसी फिल्म जो अगर आपने देखी है, इट्स यू नो व्हेन दे से यू नो इट, इफ यू नो इट यू नो इट, दैट्स हाउ दिस मूवी वॉज. Nonetheless, birthdays, anniversaries हम आज भी celebrate करते हैं जी फनेजिया पे. If you guys are celebrating anything special, birthday हो, anniversary हो, कुछ achievement आपके बच्चों ने की हो, आपने की हो, something you had been working hard on and you finally got it, do share that with me. 972-235-5555 is the number to the studio. Now, if you're living in Frisco, एक अच्छा डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है. देखो, अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील, ये दो चीज़ें बड़ी ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं. If you're a business owner, then you need that वकील. डॉक्टर तो अच्छा सबको चाहिए. तो डॉक्टर अच्छा अगर आपको चाहिए, उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है. यू हैव टू गो टू अ प्लेस विच इज़ कॉल्ड टेक्सस प्राइमरी केयर, एंड दिस इज इन फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट, एंड दे आर एक्सेलेंट एट वॉट दे डू. डॉक्टर आचार्य हैं वहाँ पे, who's gonna take excellent care of you, and they are a primary care clinic. उसके साथ साथ they have a med spa, they have in-house labs and in-house x-ray facilities, and they accept all insurances. That's Texas Primary Care for you, and this one is located right in the heart of Frisco, on the intersection of Main and I believe 423. बिल्कुल उसके पास. You'll find Texas Primary Care. एक गाने का और वक्त है. Before I take the next commercial, hit the next commercial break and break your spot, I have something coming up for you, which is a giveaway coming up from Mirage Lounge, जहाँ पे आपको मिलेगा $20 off when you spend $50 or more. $20 off मिलेंगे $50 के बिल पे, which is a great deal. कैसे जीतना है बताता हूँ. पहले लेते हैं ये गाना और उसके बाद एक छोटा सा commercial break. You're listening to Evening Drive Time Show, the one and only The Bindas Show on 104.9 FM.

0: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
1: Hello Texas Parivar, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
4: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
5: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
4: Fear not. We have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new Weekend Lunch Buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं.
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं.
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं.
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

0: Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
5: तुमसे मिलके दिल का है।
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: हम सारे ना देखने फिल्म जाते थे, पर हम बोलते थे पिक्चर देखने चलेगा, और पिक्चर भी नहीं, हम कहते पिक्चर देखने चलेगा, पिक्चर पिक्चर पिक्चर पिक्चर देखने चलेगा। तो मैं पिक्चर देखने जब तक जाता था ना, पहले 90s की बात जब है, तो थिएटर बहुत फैंसी हो गए। पहले ये हुआ करता था कि इंटरवल हुआ, एक लाइट जलती थी, पता लग गया इंटरवल हो गया, और उसके बाद जब वापस आते थे आप तो मूवी शुरू भी कर देते थे, वो उनका टाइम का को पता नहीं होता था और अंधेरा होता था। तो मैंने एक स्कीम बनाई हुई थी। अब मैं क्या करता था कि इंटरवल के बाद जब मैं अंधेरे में अपनी सीट की तरफ जाता था ना, तो जो कोने वाली सीट होती है, फर्स्ट सीट जहाँ से आप घुसते हो, मैं उनसे पूछता था, भाई साहब या लेडी हो तो लेडी, क्या मैंने जाते हुए, आप निकलते हुए इंटरवल पे, क्या मैंने गलती से आपका पैर तो नहीं कुचल दिया था? तो वो कहते हैं, हाँ क्यों सॉरी बोल रहे हो? और मैं कहा, नहीं नहीं मैं तो ये चेक कर रहा था, सीट मेरी इसी रो में है ना। सो दैट्स अ गुड ट्रिक, चेक करना हो तो निकलते हुए पहले उसका पैर पिचक करके दबा दो, जो भी बैठा हो वापसी पूछो, यही है वो रो जहां पैर दबाया था मैंने आपका, हाँ हाँ बस सीट वेरिफिकेशन। यार ये AI क्या चलाएगा हमें? AI से पहले चलती थी CHAI, चाय, जो अभी तक AI बिल्कुल ना बना पाए। Let's see who we have with us this evening on the airwaves of Fun Asia Radio. Good evening, Fun Asia. Who's this?
1: हाँ, मेरा नाम वैसे तो सैम है, पर आपके फोन में कुछ और आएगा, कॉलर आईडी में कोई फर्क नहीं पड़ता सर, इस बात से नाम क्या है।
0: सैम,
1: पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ
0: एक सेकंड,
1: कि
0: एक सेकंड सैम भाई, एक सेकंड, आपका नाम सैम है, अच्छी बात है,
1: हाँ हाँ
0: घर जाते हो तो सहम
1: हाँ
0: तो नहीं जाते?
1: नहीं सर, नहीं मेरा
0: अच्छा
1: नाम सेम है, जब से
0: अच्छा
1: पैदा हुआ हूँ मेरा नाम बदला नहीं है,
0: अरे
1: सेम ही है।
0: क्या बात है यार, सेम टू सेम है। बताइए सर आज मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए।
1: तो यार मैं ये कहता हूँ कि हमारी भाषा जो है बहुत विकृत हो रखी है।
0: विकृत हो रखी है,
1: अच्छा देखो, आपने बोला कि होल्ड करो, अब
0: होल्ड
1: मैं डर
0: करो,
1: गया, पता नहीं क्या होल्ड करवा रहे हो यार,
0: बात तो
1: आप ये
0: ठीक
1: तो
0: है,
1: बोलना चाहिए था, फोन होल्ड करो, लाइन होल्ड करो।
0: बात तो ठीक है सर, पर लाइन वो है ना जो मारी जाती है, होल्ड नहीं करी जाती। टीचरों
1: हाँ
0: टीचरों टीचरों ने सिखाया
1: हाँ
0: था, टीचरों ने सिखाया था, बेटा सीधी लाइन मारा कर, ये ले गत्ता है, ये ले रूलर, इससे मार लाइन,
1: हाँ
0: फिर बाद में गुस्सा करते हैं, लाइन क्यों मारता है यार, मैडम
1: अच्छा
0: आपने
1: फिर
0: तो
1: बोल,
0: सिखाई है। पिक्चर
1: फिर आप बोलते हो कि मैंने पिक्चर देखी है। अरे
0: देखिए
1: भाई, वो पिक्चर एक पिक्चर नहीं है, वो सारी हजारों पिक्चरों की पिक्चर बनी हुई है,
0: क्या बात
1: वो
0: है,
1: फिल्म है, फिल्म
0: इसको
1: मूवी है,
0: देखो
1: वो
0: देखो
1: मूवी। और
0: DFW के लोगों, अब समझ लो, आप लोग कहते रहे तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास कुछ करने का, ये सेम भाई को देखो, इनके पास टाइम है वहां से बात करने का और आपको ज्ञान देने का। थैंक यू सो मच सैम भाई। यार देखो जिंदगी में अलग अलग लोगों की एंट्री होती है, फिलहाल जो एंट्री मैं करवाने लगा हूँ वो करवाने लगा हूँ जी मिराज लाउंज की, एंड दे आर गिविंग यू $20 ऑफ देयर $50 बिल। पहले तो ये बता दूं कि ये लोकेटेड है जी राइट इन द हार्ट ऑफ मखिनी। मिराज लाउंज एक प्रीमियम हुक्का लाउंज है जहाँ पे खाना जबरदस्त मिलता है, कॉकटेल्स मिलती हैं, लाइव म्यूजिक एंड DJ नाइट्स होती हैं, और आप हैप्पी आवर एंजॉय कर सकते हैं मंडे टू थर्सडे सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, लेडीज नाइट एंड कॉलेज नाइट एज वेल। आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और अगर आप मुझे देंगे सही जवाब, यू विल गेट योर सेल्फ $20 ऑफ योर $50 डाइन इन बिल। बड़ा ही सिंपल सा सवाल होगा, हाँ थोड़ा सा टेक्निकल जरूर होगा, आज मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछूंगा। एक बर्थडे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिस इज ऑफ दिस लिरिसिस्ट हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, स्क्रीन राइटर हैं, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं और मार्केटर भी रह चुके हैं, CEO रह चुके हैं मैन वर्ल्ड ग्रुप के, एंड ज्यादा आगे नहीं बताऊंगा, बट इनको कुछ लिरिक्स के लिए अवार्ड मिला हुआ है जिसमें से जो मैं गाना लगाऊंगा उसकी लिरिक्स इन्होंने लिखी हैं, उसके अलावा चांद सिफारिश जो करता उसकी लिरिक्स इनकी हैं, माँ फ्रॉम द मिल फिल्म तारे ज़मीन पर उसकी लिरिक्स भी इनकी हैं, और इन्होंने भाग मिल्खा भाग के लिए भी स्क्रिप्ट राइटिंग की थी। आपने बताना है किसकी बात कर रहा हूँ मैं आज के दिन, हु इज द लिरिसिस्ट फॉर दिस सॉन्ग दैट आई एम गोना प्ले, कॉलर नंबर टू हु गिव्स मी द राइट आंसर गेट्स योर सेल्फ मिराज लाउंज पे $20 ऑफ ऑफ $50 बिल, and that is in Mikini for you.

0: विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर आखिरी वक्त तक विमान में ही रुके रहे ताकि घनी आबादी वाले अंबाला शहर.
1: All right, let's see who we have with us this evening. Who wants to give me the answer of my question, which is iske lyricist kaun the? Good evening to you, Fun Asia Radio. Who's this?
2: Hey, is the answer Prasoon Joshi?
1: आपका नाम क्या है सर?
2: मेरा नाम सचिन है.
1: सचिन भैया कह रहे हैं प्रसून जोशी. देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है कि नहीं. सचिन, कीप लिसनिंग. इफ यू हैव द राइट आंसर, आई विल गिव यू अ शाउट आउट. थैंक यू वेरी मच. प्रसून साहब कह रहे हैं जी कि नहीं, ये सचिन भाई कह रहे हैं कि प्रसून जोशी है जी इस गाने के सिंगर. लेट्स सी.
3: बिल्कुल नहीं, मैं खुद इसकी सफाई संसद में दे चुका हूँ. ये सवाल होश में नहीं जिनको मैंने खुद ट्रेन किया था. ये रिकॉर्ड
4: कैसे तुझको दिखाऊं, यहां है क्या.
1: All right, let's see who do we have on number 2 here. Same uncle, कैसे हैं आप?
5: अरे मैं नंबर 2 हो गया.
1: नंबर 2 ही मैंने सवाल सही जवाब जो देगा नंबर 2 पे उसको मिलना था ये जवाब. अब नहीं रखूं आपको नंबर 2 पे, भेज निकाल दूं चला जाऊं आगे.
5: नहीं नहीं, मैं नंबर 2 पे ही हूँ सर. मैं तो आपसे कंफर्म करवा रहा हूँ. मैं तो आई एम ओके विद इट. प्रसून जोशी की बात कर रहे हो आप?
1: प्रसून जोशी की बात कर रहे हैं हम. मिराज लाउंज जाओगे सर? हुक्का शुक्का पीते हैं?
5: नहीं, आप जाते हैं सर कभी कभी? सभी सब कुछ करते हैं सर कभी कभी, पर बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करते.
1: अच्छी बात है सर, बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए बीवी को, बाकी कुछ भी नहीं करना चाहिए. मैं आपकी
5: वो भी तो किसी के लिए ज्यादा ज्यादा है, किसी के लिए ज्यादा भी कम है, उसकी भी तो यार मायने अलग हो जाते हैं सर.
1: मालिक एक काम करता हूँ, मुझे लग रहा है आपका एक यूट्यूब चैनल बना देता हूँ. आप वहाँ पे खुल के अपनी बात किया करें, कोई चक्कर ही नहीं है. दिस इज, यहाँ थोड़ी लिमिटेशन है. अभी फिलहाल आपको मैं गिव अवे दे रहा हूँ, होल्ड कीजिए मेरे लिए. कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वन योरसेल्फ दैट $20 ऑफ $50 बिल एट मिराज हुक्का लाउंज, एंड दिस इज लोकेटेड इन मिकिनी. बहुत सारा बढ़िया खाना खिलाते हैं जी, और उसके साथ साथ दे हैव अ ग्रेट एम्बियंस व्हिच यू विल एंजॉय. यस, इट इज प्रसून जोशी, जिनका जन्मदिन आज ही के दिन 16th ऑफ सितंबर 1971 में हुआ. जैसे मैंने कहा कि ही इज अ पोएट राइटर, लिरिसिस्ट, स्क्रीन राइटर, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट एंड मार्केटर, फॉर्मर सीईओ ऑफ मकैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया एंड चेयरमैन एपीएसी व्हिच इज एशिया पैसिफिक, देन अ सब्सिडियरी ऑफ द ग्लोबल मार्केटिंग फर्म मकैन एरिक्सन. खैर, अगर इनकी बात की जाए लिरिक्स की, तो बहुत सारी फिल्में जैसे कि तारे जमीन पर इन 2007 ही वन द अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिसिस्ट फॉर दैट. चिटागोंग 2013 में फिल्म आई थी. देन ही इज डन सम वंडरफुल लिरिक्स फॉर सम लवली लवली ट्रैक्स यार, जैसे कि अगर माँ गाना सुना है अपने, मैं कभी बतलाता नहीं तारे जमीन पर, दैट्स हिम. चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी, दैट इज ऑल्सो हिम. एंड भाग मिल्खा भाग की स्क्रिप्ट तक इन्होंने लिखी है, which was an award-winning film from 2014. A very happy birthday to Mr. Prasoon Joshi from the team here at Fun Asia and from Manda Bindas. और अगर बात की है तो चांद सिफारिश क्यों ना लगाया जाए. I think the lyrics of this song is fantastic and it is written by the birthday boy here, Prasoon Joshi. Very happy birthday from team of Fun Asia and Manda Bindas.

0: करनी है।
1: सचिन भैया, इफ यू आर लिसनिंग टू मी एंड इफ यू गिव मी द आंसर प्रसून जोशी, गिव मी अ कॉल बैक बिकॉज यू विल बी द विनर, बिकॉज सचिन भैया तो कह रहे हैं वो नहीं जा पाएंगे। सचिन नहीं, वो क्या अपने आए थे ना, नेम, हाँ नेम भैया कह रहे हैं कि वो नहीं जा पाएंगे, मिकिनी। तो सचिन, इफ यू आर लिसनिंग, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब दैट गिव अवे, $20 ऑफ योर $50 बिल फ्रॉम Miraj Hookah Lounge in Mikini. Give me a call at the studio line, 972-235-5555. Today also marks the birthday of a wonderful singer. Ye gana mujhe itna pasand hai inka. And I'm sure that you've heard many songs from this guy as well. I'm talking about Richard Marx, whose birth date is 16th of September 1963. Chicago, Illinois mein inka janam hua hai. 63 years of age and scored numerous singles like Don't Mean Nothing and Satisfied in 1980s and 1990. Agar main unka ek gana pick karu, to this is the song that I would love to hear from Richard in celebration of his birthday.

प्यार किया तो निभाना मेजर साहब वाज द मूवी एंड सोनाली बेंद्रे आई थिंक शी वाज अ वंडरफुल आई मीन शी इज अ वंडरफुल लेडी बट उस टाइम पे इनकी एक्टिंग और इनकी सिंपलिसिटी बड़ी जबरदस्त लगती थी ना मुझे ऐसा लगता है नॉनदलेस दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर जिनके बारे में मैं आपको रोज बताता हूँ कि अगर आपके गोडों में चुई मुई होती है कुछ लगता है आपको कि स्टिफिनेस आ रही है या दे नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली यू थिंक योर बैक इज एक्टिंग अप योर लोअर बैक इज स्टिफ There are reasons for it and that can be cured with the right nutrition and the right exercise. That's where this physiotherapy clinic comes into play. Iske jo owner hai, the founder, the executor and the person who runs this whole show, his name is Rushi. He is himself a physiotherapist by profession for several years and also is the physiotherapist for teams like Mumbai Indian, New York and has... consulted and served many, many celebrities like Sachin Tendulkar and even Rawalpindi Express. Two locations in Frisco, they're offering you great services like physical therapy, sports rehabilitation, pelvic floor therapy, massage therapy and more. Before you take that over-the-counter dawai, ek bar Texas Star Rehab ko zarur check kijiyega. And if you're looking to send or move your documents, ship documents, move your whole house, boxes, ya ek choti si sui, ya aapki gaadi, With SFL Worldwide, you get complete door-to-door shipping and moving services, not just to India, but within the USA and duniya ki kisi bhi kone mein, bilkul aapki cheez pahunchayenge. SFLWorldwide.com

यू नो, ये एआई का जो चक्कर है ना यार, इसमें हम सब सारे कंफ्यूज्ड हैं कि एआई हमारी जॉबें तो नहीं ले लेगा, एआई आने वाले टाइम में बाकियों के लिए या हमारे फ्यूचर यूथ के लिए परेशानी तो नहीं बन जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, देन यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीलिंग स्टक और वंडरिंग इफ एआई, जैसे मैंने कहा कि वर्क प्लेस पर चेंजेस लाएगा, क्या एआई अगर हम नहीं पढ़ेंगे या हम एआई के बारे में नहीं जानेंगे, विल इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर करियर। जॉइन 4-time TEDx स्पीकर्स एंड अवार्ड विनिंग करियर कोचेस शिल्पा एंड कपिल कुलक्षेत्रा फॉर अ पावरफुल करियर ग्रोथ वर्कशॉप। ये वर्कशॉप होने लगी आपके लिए, विच इज़ गोइंग टू बी राइट हियर इन डैलस ऑन सितंबर 19th, यानी कि दिस वीकेंड इटसेल्फ। सो लर्न हाउ टू रीपोजिशन योर वैल्यू, strengthen your leadership presence and accelerate your career with clarity and confidence. Again, date is September 19th. You can register playitful.com/Dallas. That's playitful.com/Dallas. Start building your powerful career transformation story. And this is once again with 4-time TEDx speakers, not once, not twice. They've been speaking at TEDx 4 times already. And now is your opportunity to learn something from these career coaches, Shilpa and Kapil Kulkshetra. September 19th in Dallas, the website playitful.com/Dallas. playitful.com/Dallas. With that, it is time for me to say bye-bye, adios, good night. But with a promise, I always leave you, ke superwal ne zindagi di. To kal sham ko phir se hogi mulaqat, 5 to 7, right here on Fun Asia Radio with your favorite evening drive time show, jiska naam hai the one and only, the Bindaas Show, only on your favorite station, which entertains you thorough and throughout 24 hours a day, live with many shows and many RJs, bringing you the best of entertainment. That is Fun Asia. Duaon mein mujhe yaad rakhiyega, I will do the same. And always remember, nothing is more important than your well-being. Because agar aap sehatmand hai, you can lend that hand to somebody else. Agar aap sehatmand hai, aap khush honge. Khush honge, to wo reflection aapki family mein jayegi. Your kids, your wife, everybody else in your family will feel that joy. So make sure the most important person that you take care of is the man or the woman in the mirror. Good night.